ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, सक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून 2026। सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार लेके जाएंगे।
1: बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के

0: लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस।

तारक नाम के असुर से त्रस्त देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिवजी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिवजी की समाधि भराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम पांच वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा ले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस, जिसमें स्वर था हरिहरन और चौरस का, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। सुविचार।

आज का सुविचार। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें, उसे व्यर्थ न बीतने दें।

इस भक्ति रचना के साथ ही हमारा वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में ये पहला गीत आपने सुना फिल्म आरआर फिल्म से, जिसे गाया था राग पटेल ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं लापता लेडीज से ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने, लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सजाया है राम संपत ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मैदान फिल्म का ये गीत, जिसे गाया था ऋचा शर्मा और जावेद अली ने, लिखा था मनोज मुंतशिर ने और संगीत से सजाया था AR रहमान ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

सुप्रभात दोस्तों, आज सुबह जब मैं स्टूडियो में आई तो बहुत कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे इस कमरे में कुछ चीज़ें खामोश होकर भी कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। कोने में रखा रेडियो स्पीकर, दीवार पर टंगी घड़ी, डेस्क पर रखी रिकॉर्ड डायरी और ये प्यारा सा माइक, सब आज कुछ अलग लग रहे थे। अब सवाल ये है, क्या चीज़ें सच में बोल सकती हैं या फिर हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि इनकी बातें हमें सुनाई नहीं देती। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिल से सुप्रभात और इस खूबसूरत सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है कि आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा, मीठी मुस्कान और कुछ अच्छे एहसास लेकर आए। और इसी खूबसूरत शुरुआत के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत शुरू करते हैं, जहां आज हम सुनेंगे उन खामोश चीज़ों की आवाज़ जो हमेशा हमारे साथ रही लेकिन कभी हमने उन्हें बोलते हुए महसूस नहीं किया। चलिए आज निकालते हैं कुछ फुर्सत के पल।

0: फुर्सत के रात दिन।
1: दोस्तों, इन फुर्सत के पलों में ही आज पहली बार मुझे लगा इस कमरे में रखी चीज़ें सांस ले रही है। सब है तो खामोश, लेकिन आज इनकी खामोशी भारी लग रही है, जैसे ये सब मुझसे ही नहीं आपसे भी बात करना चाहते हो। और शायद आज उन्होंने तय किया है कि अब और नहीं चुप रहेंगे। आज का कुछ बातें कुछ गीत कोई साधारण सफ़र नहीं। आज हम एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहां सीधे बोलेगी नहीं, लेकिन हम उन्हें पहली बार सुनेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको लगेगा कि ये बातें आप ही की है। तो आइए दोस्तों, खामोशी को आवाज़ देते हैं और सुनते हैं उन चीज़ों की अनसुनी कहानियाँ जो हमेशा हमारे साथ थी, लेकिन कभी हमारी बातों का हिस्सा नहीं बन पाई।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आपके रेडियो दोस्त जयश्री के साथ। आज आपकी ये दोस्त आप सभी से थोड़ा अलग सा सवाल पूछना चाहती है। क्या कभी आपने अपने घर की किसी चीज को गौर से देखा है? वो पुराना तकिया जिस पर सिर रखकर आपने न जाने कितनी रातें गुजारी हैं, वो अलमारी जिसमें सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि बरसों की यादें रखी है, वो डायरी जिसके कुछ पन्नों पर आंसू सूख चुके हैं और कुछ पर मीठी मुस्कुराहटें आज भी महकती है। कभी कभी लगता है हम इंसानों से ज़्यादा हमारी चीज़ें हमें जानती हैं। हाँ, उन्हें पता है कि हम कब टूटे थे, कब हंसे थे, कब किसी का इंतज़ार किया था और कब चुपचाप हार मानकर सो गए थे। बस फर्क इतना है कि वे बोल नहीं पाती, लेकिन अगर एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए इन खामोश चीज़ों को आवाज़ मिल जाए तो शायद वे हमें हमारी ही कहानी सुना दें।

दोस्तों, हम दिन भर कितनी चीज़ों के बीच रहते हैं। कुछ चीज़ें नई होती हैं, कुछ पुरानी, कुछ हमारे सुख दुख की गवाह होती है। हाँ, हम उनसे बात तो नहीं करते, लेकिन वे हमारी हर बात जानती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे तकिए की, जो गवाह है हमारी नींदों का, सपनों का, आंसुओं का और मीठी मुस्कानों का भी। जी हाँ श्रोताओं, मैं वह तकिया।

हूँ जिस पर सिर रखकर तुम दुनिया से बेफिक्र हो जाते हो। जब पूरी दुनिया तुम्हारी मुस्कान देखती है, तब मैं तुम्हारे आंसू भी देखता हूँ। पता है मुझे कि कितनी रातें तुमने करवटें बदलते हुए बिताई, कितनी रातें तुम अंधेरों में भी सपनों में मुस्कुराए। मैं सब जानता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारा तकिया हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए वो हमें हिदायत दे रहा है कि थोड़ा कम सोचो। मैं तुम्हारे सुकून का जमींदार बनना चाहता हूँ, तुम्हारे आंसू नहीं तुम्हारी मुस्कुराहटों का राजदार बनना चाहता हूँ। इसलिए चिंताओं, उलझनों, कमियों और गिल्ट के बारे में कम सोचो। पॉजिटिव रहो, खुश रहो, ग्रेटिट्यूड का भाव रखो। सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा।

दोस्तों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज हम सुन रहे हैं उन चीज़ों की बातें जो बरसों से हमारे साथ हैं, मगर इन्हें हमने कभी बोलने का मौका नहीं दिया। तो अब हम इस काल्पनिक सफर में अगली बात सुनेंगे एक ऐसी चीज़ की जो शायद हम सबके जीवन में कभी ना कभी रही होगी। बात हो रही है दोस्तों एक डायरी की, एक साधारण सी डायरी की। लेकिन क्या सचमुच साधारण है वो? क्योंकि उसके पन्नों पर सिर्फ शब्द नहीं होते, वहां बसती हैं हमारी मुस्कुराहटें, हमारी शिकायतें, हमारे सपने और कभी कभी ऐसे आंसू भी जिन्हें किसी ने नहीं देखा। आज सोचिए अगर आपकी डायरी बोल पाती तो क्या कहती? शायद वो मुस्कुराहट करके कहती, याद है जब तुमने मेरे पहले पन्ने पर बड़े उत्साह से अपना नाम लिखा था? याद है जब पहली बार तुमने अपना कोई सपना मुझे बताया था? और याद है वो रात जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे थे लेकिन तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, बस मेरे पन्नों पर मेरे पन्नों पर अपना दर्द उतार दिया था? शायद ये याद दिलाते दिलाते तुम्हारी डायरी तुमसे एक शिकायत भी करती है। तुम बार बार मेरे पुराने दुखों वाले पन्ने खोल देते हो, लेकिन उन पन्नों को क्यों नहीं पढ़ पाते जहां तुम्हारी जीतें लिखी गई है, विक्ट्री दर्ज है, जहां तुमने मुश्किलों को हराया था, जहां तुमने खुद पर गर्व किया था? और शायद अंत में वो बहुत प्यार से कहती, दोस्त मैंने तुम्हारी कहानी संभाल कर रखी है, लेकिन अब नई कहानी लिखो, नए सपने लिखो, नई खुशियां लिखो, क्योंकि जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।

दोस्तों, अब मेरी नज़र दीवार पर टंगी उस घड़ी पर पड़ी जो सालों से एक ही जगह है, लेकिन हमें हर पल आगे बढ़ना सिखाती है। सोचिए, अगर ये घड़ी बोल पाती तो शायद कहती, तुम मुझे बार बार देखते हो लेकिन कभी मेरी बात नहीं सुनते। मैं हर सेकंड आगे बढ़ती हूँ, पीछे मुड़कर नहीं देखती। फिर भला तुम क्यों बीती बातों में उलझे रहते हो? शायद मे भी ये हमें ये भी सुनाती कि जब तुम खुश होते हो तो कहते हो समय उड़ गया, और जब दुखी होते हो तो कहते हो कि समय कटता ही नहीं। जबकि मैं तो हमेशा एक ही रफ्तार से चलती हूँ। खैर, अंत में धीरे से मुस्कुराकर वो ये भी कहती कि मुझ पर भरोसा रखना, मैं गाँव भी भरती हूँ, नई खुशियाँ भी लाती हूँ, और हर अंधेरी राह के बाद एक नई सुबह के साथ तुम्हारा दरवाज़ा भी खटखटाती हूँ। जी हाँ दोस्तों, घड़ी की टिक टिक हमें सिर्फ समय नहीं बताती, वो हमें लगातार चलना सिखाती है, हमारा हौसला बढ़ाती है, और साथ ही बताती है कि जिंदगी रुकने का नाम नहीं, जीने का नाम है।

दोस्तों, पूरे घर में एक ऐसी वस्तु भी है जो हमसे सबसे गहरी बात कहना चाहती है। जी हाँ श्रोताओं, तकिया हमारे आंसू जानता है, डायरी हमारे राज जानती है, घड़ी हमारा समय जानती है, लेकिन आईना हमें हमसे ज़्यादा जानता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी और गहरी बात यह है कि ये कभी झूठ नहीं बोलता। दोस्तों, ये आईना ही है जिसके सामने से हम रोज कई दफा गुजरते हैं, लेकिन सोचिए अगर ये आईना भूल पाता तो क्या कहता। शायद ये मुस्कुराकर कहता कि तुम रोज मेरे सामने आते हो, लेकिन मुझे नहीं दुनिया को दिखाने वाला अपना चेहरा देखते हो। कभी एक पल रुककर अपने मन का चेहरा भी देखा है? शायद साथ में वो ये भी कहता, मैंने तुम्हारे चेहरे पर आती जाती उम्र देखी है। मैंने ये भी देखा है कि तुम अब पहले से बेहद खूबसूरत लगने लगे हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में बढ़ता प्यार और अपनापन तुम्हारे चेहरे को कांतिमय बना रहा है और तुम्हारे अनुभवों की रोशनी इसमें चमक भर रहा है। आईना फिर प्यार से तुमसे ये भी कहता है कि तुम अपनी कमियों को बहुत देर तक देखते हो, कभी कभी अपनी अच्छाइयों को भी देखा करो। दुनिया तुम्हें जैसा भी देखे, लेकिन तुम स्वयं को सम्मान की नज़र से देखना मत छोड़ना। मीन्स हमेशा ऐसे अच्छे काम करना जिससे आईने के सामने तुम्हारे अक्ष के साथ तुम्हारा सम्मान भी साथ नज़र आए तुम्हें। दोस्त, याद रखना, सबसे खूबसूरत इंसान वो नहीं जिसका चेहरा सुंदर हो, बल्कि वो है जिसका दिल साफ हो। और ये वही सच है जो हर आईना हमें रोज बताना चाहता है।

दोस्तों, अब हमारे इमेजिनेशन की दुनिया में आखिरी में चलते हैं आप सभी श्रोताओं के दिल के करीब उस वस्तु की ओर जो आपको एंटरटेन भी करता है, इन्फॉर्मेशन भी देता है, जो आपकी यादों के खजाने में हमेशा जिंदा रहता है। जी हाँ श्रोताओं, जो अभी आप सभी के बहुत करीब है, आपका अपना रेडियो, जो शायद आज पहले जितना नहीं बजता, लेकिन उसके भीतर न जाने कितनी यादें अब भी महफूज है। मैंने सोचा अगर ये रेडियो बोल पाता तो शायद कहता, याद है वो दिन जब पूरे घर के लोग मेरे आसपास बैठ जाया करते थे। किसी को गीतों का इंतज़ार होता था, किसी को समाचारों का, और किसी को बस अपनों के साथ बिताए उन पलों का। शायद वो थोड़ा उदास हो ये भी कहता कि आज घर बड़े हो गए हैं लेकिन साथ बैठने का समय तो छोटा हो गया है। आवाजें तो बहुत है लेकिन बातें कम हो गई है। खैर, और फिर मुस्कुराकर वो ये भी कहता कि मुझे खुशी है कि इस भागती हुई दुनिया में आज भी कुछ लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, रेडियो में अपनापन महसूस करते हैं। ये सच भी है कि जो आत्मीयता, जो मिठास, जो अपनापन, जो लगाव आवाज़ में है, वो स्क्रीन में कहा आवाज़ हमेशा जिंदा रहती है।

0: दोस्तों, आज हम जिस सफर से गुजरे हैं वो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था। आज हमने सुनी तकिए की खामोशी, डायरी की यादें, घड़ी की सच्चाई, रेडियो की पुरानी आवाज़ें और आखिरी में आईने की वो सच्ची बात भी जो हम खुद से सुनना भूल जाते हैं। शायद सच यही है, ये चीज़ें कभी खामोशी में ही रही होगी लेकिन हमने कभी उन्हें सुनने की कोशिश ही नहीं की। आज अगर आप घर जाएं तो ज़रा रुककर अपने कमरे को देखिएगा, शायद तकिया कुछ कहना चाहे, शायद डायरी मुस्कुरा दे, शायद घड़ी आपको याद दिला दे कि समय अभी भी है, और शायद वो पुराना रेडियो फिर से आवाज़ दे उठे। और अगर ऐसा हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आज सिर्फ कार्यक्रम ख़त्म नहीं हुआ बल्कि आपने अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से सुनना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ी आवाज़ बाहर की नहीं होती, सबसे बड़ी आवाज़ वही होती है जो हमें अंदर से बदल दे। और अगर आज की इस सुबह में आपने खुद को थोड़ा सा भी महसूस किया है तो यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी जीत है। मैं आपकी रेडियो दोस्त जयश्री आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन छोड़कर नहीं जा रही, क्योंकि अब जब भी आप अपने घर की किसी चीज़ को देखेंगे तो शायद मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे।
1: जो जीवन से हार

0: दोस्तों, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 8 बज रहे हैं। अब आप सुनिएगा पहले हिंदी तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक

0: प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े

0: जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर के पदों और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
2: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। दी ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
3: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयास प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति

0: सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
3: सोनाघाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
4: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेन्दु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says strong maritime capability is deciding factor for our country.

नया दिन है, सोमवार का दिन है और तारीख है 22 जून, और इसी के साथ श्रोताओं आज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको करवाते हैं हमारी टीम से परिचय।

0: आज नमस्कार की टीम में दोस्तों ट्रांसमीटर पे हैं पारसपुरी गोस्वामी और दिलीप सिंह परमार।
1: कंट्रोल रूम से है श्रोताओं प्रवीण कुमार।
0: और एचपीटी कंसोल पर उद्घोषिका जयश्री राठी हमारा साथ दे रही हैं।
1: वहीं एफएम चैनल पर है नीतू।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुति राजेश लामरोड़ की।
1: और इन सभी के साथ श्रोताओं मैं सोफिया खान
0: और मैं चंद्रकला सुथार।
1: और इसी के साथ बातें तो होती रहेगी क्योंकि कार्यक्रम का आगाज जो है हो चुका है, लेकिन फिलहाल नए नवीले गीत में सुनवाते हैं आपको अरमान मलिक की आवाज से ये गीत।

इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आपका प्रोग्राम नमस्कार में। और शुरुआत करें प्रोग्राम में एक कोटेशन से। तो श्रोताओं कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन को हमेशा मजबूत रखना पड़ता है, क्योंकि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत।

0: तो हमारा भारत देश है जो उत्सवों और मेलों का देश रहा है हमेशा से। और सोफिया, हमारे देश में मेलों की एक अलग ही रौनक होती है ना। और मेला यानी मिलना
1: बिल्कुल।
0: और खुशियाँ मनाना।
1: और मेले का बात जब आपने की है मेले की, तो इसकी जो खुशी होती है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है।
0: बिल्कुल। और लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कश्मीर के
1: बिल्कुल
0: मशहूर मेला क्षीर भवानी के बारे में। मेला क्षीर भवानी एक धार्मिक उत्सव नहीं है, लेकिन जो घाटी है उसकी सदियों पुरानी संस्कृति और सांप्रदायिक सौहार्द और अटूट श्रद्धा का जीता जागता उदाहरण है। यह मेला ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को तुलमुला गांव में स्थित प्रसिद्ध माता रागन्या देवी यानी क्षीर भवानी के मंदिर में मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और ये मंदिर के बीचों बीच एक पवित्र पानी का कुंड है श्रोताओं, और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड के पानी का रंग बदलता है जो भविष्य के संकेतों को दर्शाता है। और माँ को पारंपरिक रूप से इस दिन शीर यानी खीर और दूध का भोग लगाया जाता है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम जो है वो पड़ा शीर भवानी। ये उत्सव कश्मीर की वादियों में गूंजने वाले मंत्रों और प्रार्थनाओं के साथ समाज में शांति और एकजुटता का एक बहुत ही मजबूत संदेश देता है।

0: और श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं खेल खबरों की। तो अभी चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप, तो कल की बात करें तो ग्रुप एफ के मुकाबले में जापान ने ट्यूनिशिया को 4-0 से शिकस्त दे दी है। जापान जो है वो वर्ल्ड कप के किसी मैच में 4 गोल दागने वाली पहली एशियन टीम बन गई है। और बात कर लेते हैं ग्रुप ई की, तो कराकाओ ने इक्वाडोर को 0-0 के बराबरी पर रोककर अपना पहला वर्ल्ड कप अंक हासिल कर लिया है। और श्रोताओं, आज के मैच की अगर बात करें तो वो है न्यूजीलैंड और मिस्र के बीच, जो कि सुबह 6:30 से शुरू हो चुका है। अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया जो कि रात 10:30 शुरू होगा, और फ्रांस वर्सेस इराक जो देर रात 2:30 से शुरू होगा।
1: और दोस्तों, बात करें भारतीय हॉकी टीम की, तो महिला नेशंस कप ने फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने अपनी मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही भारत ने अगले सीजन की FIH प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात की जाए तो टीम ने FIH प्रो लीग के रोटरडैम लीग के आखिरी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान नीदरलैंड्स को 3-2 से हरा दिया है। और साथ ही दोस्तों, भारत ने ए टीमों की ट्राई सीरीज के फाइनल में मेजबान श्रीलंका

को 66 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में युवा भारतीय टीम ने 377 रनों का टोटल बनाया है और सीरीज में पहली बार 350 रनों का आंकड़ा पार हुआ। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 47.1 ओवर में 311 रन पर सिमट गई।

दोस्तों, जिंदगी कभी ठहरती नहीं है, यह तो बहती हुई नदी की तरह है। कभी रास्ते में पत्थर आते हैं तो कभी खुला आसमान। हमें भी पानी की तरह लचीला बनना चाहिए। रास्ता ढूंढना है तो आगे बढ़ते रहना भी जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम भी अगले गीत की ओर।

0: सोफिया, आज की भाग दौड़े भरी दुनिया में कभी कभी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है खुद के साथ चुपचाप बैठना, है ना,
1: बिल्कुल
0: जिसे हम मौन कहते हैं। बिना फोन, बिना इंटरनेट, बस अपनी सांसों की आवाज सुनना, थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से कटकर अपने मन की आवाज को सुनना, है ना।
1: बिल्कुल, मन की आवाज सुननी चाहिए कि मन जो है हमारा क्या कह रहा है, उसके भीतर क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है और
0: बिल्कुल।
1: क्या होने देना चाहता है। क्योंकि कभी कभी ना मन मार के भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं,
0: जी
1: तो उसमें मन की भी इजाजत जरूरी है। और ऐसा चलता ही रहता है क्योंकि कभी कभी दूसरों के मन की भी हमें करनी पड़ती है, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है। इसीलिए अगर मौन खुद के लिए जरूरी है तो उसमें ये बात इंक्लूड हो जाती है कि मन जो है उसकी अगर हम बातें सुने तो ये हमारे मस्तिष्क के लिए भी बहुत एक अच्छा सकारात्मक सोच लेके जाएगा।
0: जी
1: तो इसी के साथ ये भी है, बात जुड़ी ही रहती है मन की। तो और इसी के साथ प्रोग्राम में अब एक न्यूज़ ब्रेक के
0: बिल्कुल,
1: लिए
0: एक
1: हम
0: आवाज
1: रुकेंगे।
0: भी हमें सुनाई दे रही है, टिक टिक टिक करती
1: बिल्कुल,
0: हुई
1: घड़ी इशारा कर
0: क्योंकि
1: रही
0: घड़ी
1: है।
0: इशारा कर रही है कि न्यूज ब्रेक का जो है समय है वो हो रहा है। तो दोस्तों को हम यही कह रहे हैं कि यहाँ हम न्यूज ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
3: समाचार। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाई माधोपुर में किया जा रहा है।

0: और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े सुरक्षित उपायों के मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल उदयपुर की महत्वाकांक्षी देवास 3 और 4 पेयजल परियोजनाओं का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन बांधों के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के सभी काम उच्च गुणवत्ता और पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से उदयपुर शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों की वर्तमान तथा भविष्य की पेयजल आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बांध, टनल निर्माण और पुनर्वास से जुड़े कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। राज्य सरकार प्रदेश में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि राजस्थान का डेयरी क्षेत्र बेहद मजबूत है और इस पर गुजरात डेयरी या अन्य किसी बाहरी का हस्तक्षेप का कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: हमारा डेयरी सेक्टर इतना मजबूत है कि यहाँ पर उन नियमों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा गांव-गांव तक, हर किसान तक हमारा डेयरी सेक्टर फैला हुआ है। हम किसानों को फैट के आधार पर, दूध पालकों को फैट के आधार पर तो पैसा देते हैं, लेकिन 5 रुपए सरकार की तरफ से पर लीटर उनको अनुदान भी देते हैं। इसलिए जो लोग, जो किसान, जो पशुपालक हमारी डेयरी से जुड़े हुए, निश्चित रूप से वो हमारी डेयरी से जुड़े रहेंगे। उनके नियमों से हमारे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
0: रोजगार के मोर्चे पर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में 4.25 लाख सरकारी नौकरियां देने के बजट घोषणा पर तेजी से अमल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर जिले को विकास की 2 बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने 42.80 करोड़ रूपये की लागत से कल नटनी का 12 से जैसमन बांध नहर को पक्की करने के काम का शिलान्यास किया। साथ ही 3.34 करोड़ रूपये से निर्मित भाखेड़ा एनिकेट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र का भूजल स्तर रिचार्ज होगा, जिससे वन्य जीवों, किसानों और आमजन की पानी की जरूरतें पूरी होंगी। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इनमें से 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इन सभी महिलाओं की शनिवार को सिजेरियन डिलीवरी कराई गई थी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं होने लगी, जिसके बाद उनका उपचार शुरू किया गया।
2: पावटा अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कुलबीर चोपड़ा ने बताया कि शनिवार को अस्पताल में 8 सिजेरियन ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के बाद भी सभी का ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव होने लगा। इनमें से 2 महिलाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल मथुरादास माथुर अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। दोनों मरीजों की किडनी भी प्रभावित हुई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News

0: और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। सवाई माधोपुर में आज से राज्य स्तरीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान वन विभाग की ओर से हो रहे दो दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य CSR के माध्यम से वन और वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री होंगे। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता।
1: राजस्थान वन विभाग द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के माध्यम से वन और वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज से राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में विभिन्न कॉरपोरेट संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योग समूहों, गैर सरकारी संगठनों, वन अधिकारियों, संरक्षण विशेषज्ञों तथा नीति निर्माताओं की सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र के मध्य प्रभावी साझेदारी स्थापित कर वन और वन्य जीवों का संरक्षण प्रभावी बनाना है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में राजस्थान की पहली सफेद बाघ सफारी शुरू हो गई है। यहां सफेद बाघ भीम और सुनहरी बाघिन सस्कंधी को टाइगर सफारी क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। रविवार को पर्यटकों ने सफारी के दौरान इन दोनों बाघों को नजदीक से देखा। इससे पहले ये बाघ केवल जैविक उद्यान क्षेत्र में रखे गए थे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन दो पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो JRF सहायक प्रोफेसर पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। NTA ने अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी है। नीट UG पुनर्परीक्षा कल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेशों के 14 केंद्रों पर कुल 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नीट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में भी रविवार को नीट UG की पुनः परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रबंधों और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। राज्य में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कल सर्वाधिक अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तापमान फलोदी में दर्ज किया गया। आज 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में 25 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। इस बीच विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खुले में रखी तैयार फसलों और अनाज को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाईमाधोपुर में किया जा रहा है। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी
3: जयपुर हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और अब जानते हैं कि इतिहास में आज का दिन क्यों है खास। बात करें साल 1939 की तो आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी आज के दिन। ९९६ में आज के दिन लॉर्ड्स के मैदान पर सौरव गांगुली ने अपने पहले टेस्ट मैच में 131 रन की पारी खेली थी।

0: और 2016 को इसरो ने पहली बार एक ही मिशन में 20 उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी सटीक कक्षाओं में स्थापित किया था। इससे पहले भारत ने 2008 में एक साथ 10 सैटेलाइट लॉन्च करने का कमाल किया था। यह मिशन इसलिए बहुत बड़ा था दोस्तों, क्योंकि अंतरिक्ष में सभी 20 सैटेलाइट्स को एक दूसरे से टकराने से बचाते हुए बेहद कम समय में अंतराल पर अलग अलग कक्षाओं में छोड़ना तकनीकी रूप से बहुत पेचीदा था। इसरो ने इस मिशन के बाद दुनिया के कमर्शियल स्पेस मार्केट में अपनी धाक जमा दी थी। और 2007 को भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 195 दिन बिताने के बाद सफलतापूर्वक अपनी टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर लौटी थीं। यह उस समय तक किसी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड था।
1: और इसी के साथ श्रोताओं, बात करें साल 2006 की, तो अमेरिका ने आज के दिन मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था।

0: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों आज सोमवार है और सोमवार को सेगमेंट होता है विज्ञान विश्व। आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं इबोला वायरस के बारे में। दोस्तों जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी दुनिया के किसी कोने से उठी एक हलचल हमें यह याद दिलाती है कि सावधानी ही सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। इबोला नाम आपने सुना होगा। इबोला वायरस रोग, जिसे पहले इबोला रक्त स्त्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, एक अत्यंत गंभीर और अक्सर घातक बीमारी है जो मनुष्यों और अन्य प्राइमेट्स जैसे बंदर है, गोरिल्ला है, चिंपेंजी है को प्रभावित करती है। इबोला क्या है? अगर आप यह सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि यह एक वायरस है। यह इबोला फैलता कैसे है इसके बारे में बात करें तो यह वायरस संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क यानी रक्त स्त्राव है कि एक बार जब मनुष्य संक्रमित हो जाता है इसमें तो यह आउटब्रेक यानी महामारी का रूप में फैल सकती है, और अगर सही समय पर आइसोलेशन और बचाव के उपाय न किए जाएं तो अंगों और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से मनुष्यों में यह फैल जाता है। मनुष्यों के बीच इसका प्रसार संक्रमित व्यक्ति के रक्त या फिर शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से होता है, यह हवा से नहीं फैलता है।
2: बिल्कुल, और इसके संक्रमणों की बात करें कि इसके लक्षण क्या हैं, तो इस संक्रमण के 2 से 21 दिन के भीतर जो है इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं श्रोताओं। और शुरुआती लक्षणों की बात करें तो उसमें है तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, और जब लक्षण गंभीर हो जाते हैं तो उनमें लक्षण होते हैं उल्टी दस्त, त्वचा पर चकत्ते, किडनी और लिवर का काम बंद करना, और जब लास्ट स्टेज में अगर पहुंच गया ये संक्रमण तो शरीर के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों में अत्यधिक ब्लीडिंग होना इसके लक्षण हैं।
1: और बचाव और उपचार की बात की जाए तो संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से बचना चाहिए, सुरक्षित अंत्येष्टि प्रथाओं का पालन करें और स्वच्छता बनाए रखें। और वर्तमान में इबोला के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा नहीं है दोस्तों, लेकिन प्रारंभिक सहायक देखभाल है जो जैसे कि डिहाइड्रेशन रोकने के लिए

इलेक्ट्रोलाइट्स और तरल पदार्थ देना से जीवित रहने की संभावना है जो काफ़ी बढ़ जाती है। अब कुछ टीके और उपचार पद्धतियां भी विकसित हो गई हैं जिनका उपयोग जोखिम वाले क्षेत्रों में किया जा रहा है। इबोला जैसी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों की तत्परता और सामुदायिक जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी संदिग्ध मामले में तुरंत चिकित्सा सहायता लेना और आइसोलेशन का पालन करना संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। यह थी विज्ञान विश्व में इबोला वायरस की बातचीत।

तो फिट रहना किसे पसंद नहीं है, लेकिन हमारा टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि क्या कहें, हमें एक्सरसाइज करने में भी आलस आता है और बात जब बढ़ती उम्र की हो जाती है तो उसमें सबसे मुश्किल हो जाता है एक्सरसाइज का चुनाव करना, और कई बार ज़्यादा प्रयास करने के चक्कर में हम खुद को भी चोट पहुंचा देते हैं। ऐसे में इससे बचते हुए हमें ऐसी एक्सरसाइज चूज करना चाहिए जिससे हम फिट रहें और इंजरी से भी बचें। तो इसमें आज के काम की बात ये है श्रोताओं कि सबसे ज़रूरी होता है इसमें बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाना हर उम्र में ज़रूरी है। तो ये जो है योग, स्ट्रेचिंग या किसी भी पोस्चर एक्सरसाइज से आपका बैलेंस बेहतर हो सकता है। बात करें कार्डियो की, तो इसमें जो तेज़ चलना होता है, सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, ये सब कार्डियो एक्सरसाइज है। ये एक्टिविटीज़ जो होती है वो दिल की सेहत को मजबूत बनाने में बहुत मदद करती है। और बात करें ट्रेनिंग की, तो ये भी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करती है और इससे आप देर तक बिना थकान के काम कर सकते हैं। और योग और स्ट्रेचिंग भी आपके शरीर को लचीला तो बनाए रखते हैं, साथ ही में इससे आपको छोटे छोटे कामों के दौरान जो मांसपेशियों में खिंचाव आता है उस समस्या से नहीं गुजरना पड़ता।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों के निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: अच्छा चलो दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है। आज विश्व रेन फॉरेस्ट डे है। जब हम रेन फॉरेस्ट डे या वर्षा वनों की बात करते हैं तो हमारे जहन में हरी भरी वादियों, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और एक अनूठे संसार की तस्वीर उभरती है जो इस पूरी धरती की धड़कन है। ये वन सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं बल्कि हमारी धरती के वो फेफड़े हैं जो हमें खुलकर सांस लेने की आज़ादी देते हैं। लेकिन बदलती दुनिया के साथ इन जंगलों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो वन वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के खास मौके पर हम ऐसे एक्सपर्ट से बात करने वाले हैं जो पर्यावरण को, वनों को बेहद करीब से जानते हैं। आज हमारे साथ फोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं सूरत गुजरात से खास मेहमान गौरव लोढ़ा जी। आप भारतीय वन सेवा में सहायक वन संरक्षक पद पर कार्यरत हैं। हेलो।
1: जी, नमस्ते मैम।
0: हाँ गौरव सर, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, बिल्कुल, धन्यवाद।
0: जी, सबसे पहले तो आपको विश्व रेन फॉरेस्ट दिवस की बहुत बहुत बधाई।
1: जी, आप सभी को भी बधाई मेरी तरफ से।
0: जी, आप तो रोज जंगल की दुनिया में हिफाजत में रहते हैं, उनकी दुनिया की, इसकी नब्ज को पहचानते हैं। क्या होते हैं जंगल, कैसी होती है वहां की दुनिया, वहां का वातावरण? क्योंकि हमने तो सिर्फ सर कहानियों में ही सुना है कि किसी जंगल में शेर रहता था, लोमड़ी रहती थी, कहानियों में ही जंगल की कल्पना की है। आप बताएं जंगल क्या होता है।
1: जंगल एक अलग दुनिया होती है जो हमारे शहरों से, गांव से बहुत अलग होती है। वहां में जो जमीन है, वहां का जो वातावरण है, वहां के जो पेड़ है, पौधे हैं, जीव जंतु है, तो हर कदम में हमें कुछ नया देखने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है। और एक प्रकृति का संदेश होता है कि अगर हम जंगल बचाएंगे

0: की दुनिया है, जो जंगलों की दुनिया है वही शहरों की, और जो हमारे गांवों की दुनिया है जो खराब हो रही है वो बच सकती है, और हम दुनिया को प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं।
1: जी सर। सर आप जिस एरिया में काम करते हैं उस जंगल में कौन कौन से मतलब अभी जानवर हैं?
0: तो मैं साउथ गुजरात में पोस्टेड हूँ, सूरत जिला में, और यहाँ पे जो इंडिया में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होता है उस टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। तो
1: जी
0: यहाँ पे अगर कार्निवोर्स की बात करें तो लेपर्ड है, वुल्फ है, हाइना है, और अगर हर्बीवोर्स की बात करें तो डियर है, उसमें स्पॉटेड डियर है, बार्किंग डियर है, पॉर्क्यूपाइन है, और उसके अलावा कई सारे जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे क्रैब है, लॉबस्टर है, स्पाइडर है, तो ये छोटी छोटी प्रजातियां भी हैं, रैबिट है, तो ये कुछ स्पीशीज है जो हमारे यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं।
1: जी सर, आपने लेपर्ड्स की बात की, तो क्या लेपर्ड्स भी कहीं और से शिफ्ट किए जाते हैं यहाँ पर, या यहाँ से कहीं और शिफ्ट किए जाते हैं?
0: नहीं, लेपर्ड्स यहाँ नेचुरली कुदरती पाए जाते हैं। इन जनरल लेपर्ड्स का ट्रांसलोकेशन या शिफ्टिंग नहीं किया जाता,
1: अच्छा,
0: और लेपर्ड एक को देखा जाए तो टाइगर और लायन के कंपैरिजन में अबंडेंट स्पीशीज है, तो यहाँ पे नेचुरली पाए जाते हैं, और उसके लिए हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जंगल को बचाएं, क्योंकि जितना जंगल कटता है उतना लेपर्ड या कोई भी वाइल्ड एनिमल ह्यूमन हैबिटेशन में एंटर करता है, और उससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट बढ़ते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि उसको जंगल में ही उसके लिए कुदरती खुराक मिले, उसको पानी मिले, ताकि जंगल का भी संरक्षण हो और लेपर्ड का भी संरक्षण हो।
1: जी सर, आप सहायक वन संरक्षक पद पर कार्यरत हैं, तो आपके क्षेत्र में जो काम है वो क्या आता है आपके हिस्से में?
0: तो मैं ACF सूरत की तरह यहाँ पोस्टेड हूँ, मेरे अंडर तीन रेंज आती है, उमरपाड़ा, वड़पाड़ा और वाकल। तो हमारा देखा जाए मोटा मोटा चार तरीके का मेजर काम रहता है। फर्स्ट, इसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उनको बचाना, उसके अंदर कोई भी गलत काम हो रहा है जैसे इलीगल कटिंग है, एंक्रोचमेंट है, फॉरेस्ट फायर है, तो इन सब चीजों को हम रोकते हैं। दूसरा हमारा मेजर काम रहता है एफॉरेस्टेशन और प्लांटेशन का, जो भी लैंड डिग्रेडेड है, जो भी जंगल विस्तार कट चुका है उस पे वापस हम पेड़ पौधे लगाते हैं, और उनकी 4, 5, 10 साल तक उनकी रक्षा करते हैं, ताकि जो पेड़ है बीज से लेके एक बड़ा पेड़ होने का जो सफर है उसको हम सुनिश्चित करते हैं कि वो एक जो डिग्रेडेड एरिया है वो एक घने जंगल में तब्दील हो। तीसरा इसमें होता है जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है जो जंगल पे डिपेंडेंट होती है, ये जहाँ मैं पोस्टेड हूँ ये ट्राइबल विस्तार है, तो ट्राइबल लोगों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए हम कई तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, ताकि वो अपना जो एक स्तर है, जीवन का स्तर उनका सुधर सके और वो अच्छा जीवन जी सके।
1: जी
0: और
1: सर।
0: चौथा इम्पोर्टेंट काम होता है इको टूरिज्म, तो इसमें हम टूरिज्म को एक सस्टेनेबल और फ्रेंडली वे में प्रमोट करते हैं, जो लोग जंगल में रुकना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और उसको कैसे सस्टेनेबली हम उसको प्रमोट कर सकते हैं जंगल को, तो वो सब हम इको टूरिज्म साइट्स में करवाते हैं। इसमें ट्रैकिंग होती है, कैंपिंग होती है, स्टार गेजिंग होती है, लोगों को ट्राइबल कम्युनिटीज से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, तो ये सारे हम प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। तो ये मोटे मोटे चार काम हैं जो हम करते हैं।
1: जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही जिम्मेदारी वाला, जागरूक वाला काम है सर। सर ये तो जंगल की एक सामान्य बातचीत हुई, जंगल की दुनिया से परिचय हुआ, लेकिन आज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेन फॉरेस्ट क्या है?
0: रेन फॉरेस्ट एक तरह के डेंस फॉरेस्ट होते हैं जहाँ साल भर में बहुत अधिक वर्षा होती है, आमतौर पे देखा जाए तो लगभग 2000 mm से भी ज्यादा अगर जहाँ बारिश होती है उनको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। ये फॉरेस्ट दुनिया की जमीन का लगभग 6 से 7% हिस्सा कवर करते हैं,
1: जी
0: लेकिन इसमें इन जंगलों में पृथ्वी की लगभग 50% से अधिक प्लांट और एनिमल स्पीशीज पाई जाती है, इसलिए इन फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है।
1: अच्छा, तो इसे विश्व स्तर पर मनाने का क्या कारण है सर, इस
0: इसका
1: दिन को?
0: ये उद्देश्य है कि लोगों को ये समझाना कि रेन फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, ये क्लाइमेट रेगुलेशन, रेनफॉल, बायोडाइवर्सिटी और इन जनरल ह्यूमन वेलबींग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉरेस्ट है। हर
1: अच्छा
0: साल दुनिया में लाखों हेक्टेयर

0: रेन फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, तो इसलिए कंजर्वेशन के प्रति जो अवेयरनेस बढ़ाने की आज की जरूरत है उसको हम वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के तरह मनाते हैं, ताकि लोगों तक पहुंच पाए और इनकी इम्पोर्टेंस सबको बता पाए।
1: जी। और सर, हम आजकल देखते हैं कि मौसम बड़े बदले हुए लगते हैं, बहुत बदलाव देखते हैं मौसम में, कहीं भीषण गर्मी, कहीं बारिश, कहीं सूखा। इस क्लाइमेट चेंज का क्या कारण है सर?
0: जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ता एमिशन है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे बेसिकली जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, तो इनका उपयोग और जो डिफॉरेस्टेशन इन जनरल जो मानव कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, तो अगर हम पिछले 150 वर्षों में देखें तो पृथ्वी का जो

0: काट रहा है। तो अगर हम पिछले 150 वर्षों में देखें तो पृथ्वी का जो औसतन तापमान है लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ चुका है, और इसके कारण हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। जब भी जंगल कटते हैं तो जो कार्बन एब्जॉर्प्शन हमारे पेड़ पौधे करते हैं वो कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। तो इसके कारण ये ग्रीन हाउस गैस का एक चेंबर बनता जा रहा है जो हमारी पृथ्वी, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसी के कारण हम आजकल देख रहे हैं हीट वेव्स है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राकृतिक हमें ये डिजास्टर्स देखने को और झेलने को मिल रहे हैं, और इन सब का कारण ही क्लाइमेट चेंज है।
1: जी बिल्कुल सर। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो जो वर्षावन के नष्ट होने का कारण है, तो क्या इस ग्लोबल वार्मिंग को ही इसका कारण माना जाए, या सबसे बड़ी चुनौती है ये इसके लिए?
0: ग्लोबल वार्मिंग चुनौती है, लेकिन इसका जो रूट कॉज है वो है हमारे फॉरेस्ट पे बढ़ता हुआ ह्यूमन प्रेशर।
1: बिल्कुल।
0: आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर का एक्सपांशन हो रहा है, कई जगह से एंक्रोचमेंट हो रहा है, फॉरेस्ट में फायर लग रही है, कई जगह से इलीगल तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है। तो इन सारी चीजों से हमारा जंगल प्रभावित हो रहा है,
1: बिल्कुल।
0: और क्लाइमेट चेंज भी इन्हीं चुनौतियों में से एक नई चुनौती बनकर उभरा है, क्योंकि इससे जो हमारे फॉरेस्ट फायर है या जो डिजीज का अटैक होता है, पेस्ट अटैक है, या जो पानी का स्ट्रेस है वो और बढ़ रहा है। तो इसी कारण इसके कंजर्वेशन के साथ साथ हमें फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के साथ साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी बहुत जरूरत है, ताकि लोग अगर इस मूवमेंट को या इस इशू को समझ पाए तो हम सब साथ मिलके काम कर सकते हैं और हमारे जंगलों को बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल सर। और जब बात सेफ्टी की आती है, तो क्या फर्क होता है आम जंगलों की तुलना में वर्षावनों का मैनेजमेंट और सेफ्टी कितना अलग होता है?
0: काफी डिफरेंस होता है। वर्षावन में जनरली जो पानी का फ्लो है, पानी जो गिरता है वो ज्यादा होता है, और जो आम जंगल हुए इंडिया की अगर बात करें तो थोड़े से सूखे जंगल होते हैं। तो सूखे जंगल में सर आग लगने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है, पानी की कमी ज्यादा रहती है।
1: बिल्कुल।
0: वहीं अगर वर्षावन में देखा जाए तो पानी बहुत ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी होते हैं, तो वहाँ थोड़ा थ्रेट भी ज्यादा रहता है।
1: बिल्कुल।
0: जो स्पीशीज हम लगाते हैं, जो एफॉरेस्टेशन करते हैं, या जिस तरह से पानी का मैनेजमेंट करते हैं, वो दोनों जंगलों में बहुत अलग होता है, और उसी हिसाब से ये जंगल सरवाइव करते हैं।
1: और जब बात हो जाती है कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है, बारिश का भी और किसी चीज़ का भी, तो कितना नुकसान पहुंचा है इन वर्षावनों को?
0: जी, मतलब इन वर्षावनों को जो पैटर्न हमारा चेंज हुआ है, तो वर्षावन को जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, बारिश की बहुत जरूरत होती है, पानी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पानी का फ्लो या जहाँ वर्षा जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ ज्यादा हो रही है, और जहाँ होनी चाहिए वहाँ कम
1: कम
0: हो
1: हो
0: रही
1: रही
0: है।
1: है।
0: तो
1: बिल्कुल।
0: इसके कारण वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा है, फौना है, उनको इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि पानी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा, टेम्परेचर में राइज हो रहा है, तो वर्षावनों का जो टेम्परेचर होता है लगभग 25 डिग्री के आसपास, वो चेंज हो रहा है, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। तो जैसे ही पर्यावरण में इवन 1 डिग्री का भी जब चेंज आता है, तो वहां का जो फ्लोरा फौना है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, और उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चुनौतियां बढ़ के आ रही है क्लाइमेट चेंज के कारण।
2: जी सर, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि रेन फॉरेस्ट को हमसे बहुत दूर अमेजन या फिर अफ्रीका देशों में है, तो भारत या हमारे स्थानीय पर्यावरण के लिए इनका क्या महत्व है? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह प्रभावित करते हैं ये वर्षावन?
0: ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है आपका। अगर क्लाइमेट देखे तो ग्लोबल है, हो सकता है जो ये वर्षावन है हमसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन ये हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई तरीके से इफेक्ट करता है। अमेजॉन जो रेन फॉरेस्ट है उनको तो अर्थ का लंग्स बोला जाता है, क्योंकि वो उसमें अरबों टन का कार्बन स्टोर है। तो ये जो अर्थ के लंग्स है, ये ग्लोबल रेनफॉल पैटर्न्स को और टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, और उससे कहीं ना कहीं हम लोग भी इफेक्ट होते हैं। अगर भारत में बात की जाए तो हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट्स है, अंडमान निकोबार के आईलैंड्स और फॉरेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के रेन फॉरेस्ट है, तो इनसे निकलने वाली शुद्ध हवा, नदियां, साफ पानी, ये हमारे जीवन को बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से

0: फायदा पहुंचाते हैं, और अगर ये मॉनसून की जो पैटर्न्स है, एग्रीकल्चर है, फूड की सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें इनसे इंटरकनेक्टेड है। तो
1: जिसे
0: ऐसा नहीं है कि अगर ये रेन फॉरेस्ट अफ्रीका या अमेरिका में है तो हमें इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा
1: भारत
0: जो
1: में
0: पूरा जीवन है इसी पे स्थगित है।
1: बिल्कुल सर, भारत में रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है?
0: हाँ, जैसे अभी मैंने कहा, वेस्टर्न घाट्स में है, अंडमान
1: अच्छा।
0: निकोबार आइलैंड्स में है, और नॉर्थ ईस्ट के भी कई हिस्सों में
1: असम,
0: रेन
1: मेघालय।
0: फॉरेस्ट है।
1: सर, अक्सर लोग सोचते हैं कि जंगलों को बचाना सिर्फ सरकार या वन विभाग का ही काम है। एक आम नागरिक जो शहर या गांव में बैठा है, वह अपने आसपास के पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान कैसे दे सकता है?
0: नहीं, जैसे हम छोटी से छोटी चीज में भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, और जो कंजर्वेशन की जिम्मेदारी है, सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी है। तो
1: जी।
0: सबसे आसान चीज है कि आप पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, उनका ध्यान रखिए, उनको बड़ा कीजिए। दूसरा है कि कोई भी अगर आप छोटा सा डिस्टेंस है, जैसे कुछ सामान लेना है, कहीं जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा पैदल चलिए या साइकिल का इस्तेमाल करिए, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को अवॉइड कीजिए। तीसरा है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, आजकल हम देखते हैं हर जगह प्लास्टिक का यूसेज है। तो कुछ भी आपको अगर सामान लेना है तो आप कपड़े का बैग या जूट का बैग लेके जाइए, और जितना हो सकता है प्लास्टिक का कंजम्पशन कम कीजिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है पानी और बिजली। हम देखते हैं अक्सर कई लोग पानी को बहाते हैं, घर धोते हैं, गाड़ी धोते हैं, और कई बार वेस्ट भी करते हैं। तो ये सारी टेंडेंसीज को हमें कम करना होगा, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करनी होगी। स्पेशली अगर हम जोधपुर की बात करें तो ऑलरेडी डेजर्ट का पार्ट है, तो जितना हो सकता है जो बरसाती पानी है उसका संग्रह करना चाहिए, वाटर को रिड्यूस और रिसाइकल करना चाहिए, और बिजली को भी बचाना चाहिए। मतलब जहां जरूरत नहीं है लाइट, पंखा, एसी, उसका इस्तेमाल नहीं करना है,
1: बिल्कुल
0: और
1: सर
0: जितना हो सकता है मिनिमम यूसेज करना है।
1: जी, इन सब बातों का
0: और
1: जी।
0: एक एक मोटे तौर पे देखा जाए तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाना है।
1: जी।
0: अगर ये जो संदेश है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर सभी में आ जाए, तो जो पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारा जो ड्यूटी है, वो अपने आप ही फुलफिल हो जाएगी और हमारा जंगल बच जाएगा।
1: बिल्कुल, आपके इस खास संदेश के साथ ही अगर हम पर्यावरण में इस तरह योगदान देंगे तो जरूर उसको हम सहायता कर सकते हैं आज के वनों को बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सर, आपसे बातचीत करके आज के पर्यावरण को लेकर एक नई सोच और नई ऊर्जा मिली है। चलते चलते अपनी पसंद का वो गाना हम जरूर सुनना चाहेंगे।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और फुटबॉल की दुनिया का सबसे जुनूनी, जोशीला और रोमांचक आयोजन है यह। फीफा विश्व कप 2026 11 जून से शुरू हो चुका है। इस बार 11 जून से 19 जुलाई तक यह चलेगा और कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में इतिहास रचा जाएगा इसमें, क्योंकि पहली बार इस टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लेकिन फुटबॉल का ये जो रोमांचक सफ़र है वो सिर्फ गोल करने तक सीमित नहीं है। इस खेल की असली जो बात होती है वो इसके संगीत में होती है। जी हाँ दोस्तों, इस बार इस महाकुंभ को संगीतमय बनाने के लिए एक नया एंथम तैयार किया गया है। इस साल के आधिकारिक गीत का जो नाम है वो है दाई दाई, जिसका इतालवी भाषा में अर्थ होता है चलो चलो। इस गीत की एक बेहद खूबसूरत पंक्ति है, व्हाट वंस ब्रोक यू मेड यू स्ट्रांग, मतलब जिस चीज ने तुम्हें कभी तोड़ दिया था उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया है। यह संदेश मैदान में उतरने वाली हर टीम को विपरीत परिस्थितियों में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है।
4: बिल्कुल, ये संदेश मैदान पर उतरने वाली टीम को विपरीत परिस्थितियों में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है, जैसा कि चंद्रकला जी ने बताया। तो खास बात ये है श्रोताओं कि शुरुआती दौर में फीफा की तरफ से कोई भी आधिकारिक संगीत नहीं होता था और हर देश अपनी संस्कृति और धुने साथ में लाता था। पहले विश्व कप की जीत का जश्न उन्होंने उरुग्वे चैंपियंस गीत से मनाया, जो इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि दशकों तक रिकॉर्ड किया जाता रहा। इटली के पास अपना ओपेरा था, स्पेन के पास कॉपलास और इंग्लैंड अपने ब्रास बैंड के साथ मैदान पर उतरता था। समय के साथ साथ प्रशंसकों के नारे ने अनौपचारिक राष्ट्रीय फुटबॉल गीतों का रूप ले लिया।
3: बिल्कुल, जैसे अर्जेंटीना का बामोस बामोस अर्जेंटीना, चलो चलो अर्जेंटीना, चलो हम जीतेंगे। मेक्सिको का सीएलितो लिंडो और 19वीं सदी का स्पेशनिस लोकगीत है जिसका अर्थ है मेरी प्यारी जान।
4: और उरुग्वे का बामोस सिलिस्ते यानी जिसका अर्थ है चलो जीते। ब्राजील का है यूसो ब्राजीलेरो यानी मैं ब्राजीली हूँ। इस नारे के साथ जो प्रशंसक है वो सांबा नृत्य भी करते थे।
3: और फुटबॉल और संगीत की यह जो जुगलबंदी है दोस्तों सदियों पुरानी और अटूट है। जब मैदान पर पैर थिरकते हैं तब स्टैंड से गूंजती ये धुने और एंथम खिलाड़ियों में वो ऊर्जा फूंकते हैं जो इतिहास रच देते हैं, और यही है आज की खास की बात।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बात जयंती विशेष की, तो आज हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा और थिएटर के एक अनूठे और शानदार चेहरे, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। नीली आंखें और चेहरे पर विदेशी लुक, लेकिन जब वो बोलते थे तो उनके मुंह से बहती हुई शुद्ध मखमली हिंदी और उर्दू की रवानगी सुनकर अच्छे अच्छे विद्वान दंग रह जाते थे। वो दिखने में भले ही विदेशी थे, लेकिन दिल और आत्मा से पूरी तरह हिंदुस्तानी। नाम है टॉम एल्टर। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। उन्होंने करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया था श्रोताओं, और 2008 में भारत सरकार द्वारा टॉम एल्टर को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उनके मुख्य फिल्मों की अगर हम बात करें तो वो है शतरंज के खिलाड़ी, राम तेरी गंगा मैली, क्रांति, चरस, आशिकी, वीर जारा, और 29 सितंबर 2017 को इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया था।
4: जी हाँ दोस्तों, और भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी सबसे प्रभावशाली, रौबदार और यादगार खलनायकों का जिक्र होगा तो अमरीश पुरी जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। आज अभिनेता अमरीश पुरी की भी जयंती है। अपनी कड़क आवाज, बड़ी बड़ी आंखों और दमदार अभिनय से उन्होंने पर्दे पर जो खौफ और करिश्मा पैदा किया, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। अमरीश पुरी केवल महान खलनायक ही नहीं, बेहद संवेदनशील और बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। अभिनेता के रूप में निशान, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाले अमरीश पुरी ने बाद में खलनायक के रूप में काफी प्रसिद्धि पाई।

0: दोस्तों आज के नमस्कार के अंक को देते हैं यही विराम। इस सफर में मैं थी आपके साथ चंद्रकला सुथार
1: और मैं सोफिया खान। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं विविध लोक कलाकारों को कार्यक्रम लोक संगीत में, जिसमें सबसे पहले हम सुन रहे हैं प्रकाश माली की आवाज़ में ये लोक रचना।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लोक संगीत में ये अगली रचना हम आपको सुनवाएंगे कालूराम प्रजापत की आवाज में।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जोधपुर आकाशवाणी सूर्यनगरी चैनल से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लोक संगीत में ये अगली रचना आप सुनेंगे सीमा मिश्रा की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए सुगम संगीत।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में हम आपको आज सुनवा रहे हैं चंदन दास की रचनाओं को।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, जिसे हमने लिया था फिल्म जीत से। अब आप सुनिए फिल्म दिल है कि मानता नहीं से ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

अभी आपने सुना विजयपथ से ये गीत जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, ये थी लोक संगीत की आखिरी पेशकश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। आइए आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। जोधपुर शहर के सरकारी पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद तबीयत बिगड़ने वाली 8 प्रसूताओं में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने जयपुर में पत्रकारों को बताया कि इनमें से 6 प्रसूताओं की स्थिति सामान्य है, वहीं एक को एम्स में भर्ती कराया गया है।
1: पावटा के अंदर 6 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है, उनका यूरिन वगैरह ऑल पैरामीटर्स आर ओके। एक जो एम्स में रेफर कर रहे हैं वो हाईली डायबिटिक है और एक प्रसूता जो एमडीएम में है उसके पीलिया हुआ है, उसको भी जो है हम परमिशन ले रहे हैं कि हम चांस क्यों ले, क्योंकि एम्स की फैसिलिटीज जो है वो एक अलग लेवल की फैसिलिटीज होती है।
0: ये मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने संबंधित ऑपरेशन थिएटर को सीज कर दिया है। संक्रमण के कारणों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में उपयोग किए गए उपकरणों, दवाओं और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूरी तरह शांत रखने का साधन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन को शांत करना और श्वास प्रवाह को नियमित करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल में 2% से अधिक की गिरावट के साथ लगभग $89 पर आ गई। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जैसलमेर से गिरफ्तार मुश्ताक अली को आज जयपुर की एक अदालत ने 3 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। 5 दिन की रिमांड पूरी होने पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने कॉल डिटेल और बैंक खातों की विस्तृत जांच के लिए अदालत से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। पुलिस के अनुसार मुश्ताक पिछले 2 साल से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों के साथ साझा करता था। प्रदेश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष यातायात अभियान के तहत 1,37,000

0: हजार से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है। 4 से 20 जून तक चले इस अभियान में सबसे ज्यादा शिकंजा अवैध काली फिल्म वाले वाहनों पर कसा गया। इसके तहत 51,000 से अधिक वाहनों में काली फिल्म हटवाई गई। साथ ही नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, अनाधिकृत चिन्ह, लाल बत्ती, नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न के मामलों में भी सख्त कार्रवाई की गई। यातायात महानिदेशक अनिल पालीवाल ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य चालान काटना नहीं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। जिलेवार कार्रवाई में जयपुर पश्चिम सबसे अव्वल रहा। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आमजन को पेयजल संकट से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार के विशेष अभियानों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चलाए गए 9 अभियानों के तहत 24,000 से अधिक पेयजल समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया है। 5 अप्रैल से 20 जून तक चले इन अभियानों में 5,000 से अधिक खराब हैंडपंपों की मरम्मत, पाइप लीकेज दुरुस्त करने और बाधित जलापूर्ति बहाल करने सहित लाखों लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई गई है। पिछले सप्ताह इस अभियान के दौरान एक दिन में 2,385 पेयजल समस्याओं का निस्तारण किया गया। प्रदेश में मौसम के मिजाज में बदलाव का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के झांकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 26 मिलीमीटर बारिश झुंझुनू और सीकर के रामगढ़ में दर्ज की गई। वहीं सर्वाधिक अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान जोधपुर में 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा अलवर, पिलानी और सीकर में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान भाया, बरसात रो जिको मौसम है वो आपरे चाल रियो है। कई किसान भाई आपरे खेती बाड़ी रे जिका काम काज है वे आपरे लगो लग कर रिया है। कई किसान भाई जैसे मान लो सब्जी री पैदावार भी भांत भांत री लेवे है, और लाल दिना भी आपने जानकारी दे रहे की भाई बरसात रे मौसम रे महीने आपा किसी किसी सब्जियां जिकी है वे आपा ले सका। हम जो बात करा के भाई हमें कई भाई सन जो मान लो पालक खेत रे मैंने बायोड़ो है, कई भाई सन मान लो पालक री खेती और करनी चाहे है, तो आपने आज जानकारी दी रहा क्या भाई पालक री खेती अपा किकर करा। और पहलो मान लो पालक अपने खेतर महीने बायोडो है तो उनरो कीट प्रबंधन रो जिको कारज है, उनरो जिको कीट नियंत्रण है पालक री खेती रे महीने वो आपा किन तरह से कर सका। किसान भैया पालको जिको है वो कम टाइम रे महीने बत्ती पैदावार देवन वाली जिकी आप फसल है, और किसान भाई साल भर आप रे अच्छी आमदनी पालक की खेती करे तो आप रे ले सके। हम जो बात करा के भाई हरी सब्जी रे महीने पालक जिको है बहुत ही महत्वपूर्ण जिको स्थान है और आख्या करे। इन पालक रे महीने आयरन व्या करे, प्रोटीन है, खनिज लवण है, इनरे हाथे हाथे एंटी ऑक्सीडेंट जिको है भरपूर मात्रा रे महीने होया करे। आ एक ऐडी सब्जी है जिको कम टाइम रे महीने हो जा और खर्चो भी कम आवे, और जिको मुनाफो है वो भी आप रे लोगो लग आप रे किसान भाई पैदावार लेनी चाहे तो आप रे मिले है। हमें पालक री खेती रे वास्ते बात आवे की मिट्टी और जलवायु कैडी होनी चाहिए, तो आप बात करा के भाई सगले तरह री जिकी मिट्टी है उनरे महीने आप पालक जिको है वो आप ले सका। बलुई मिट्टी दोमट वे तो बहुत ही बढ़िया मानी जा करे, और मिट्टी रे जिको पीएच जिको मान है वो 6-7 रे बीच में वे तो बहुत ही बढ़िया रिया करे। पालक रे खेती रे वास्ते किसान भाई आपने बढ़िया गहरी जुताई आपने करे, और 2-3 दान आपने बढ़िया देसी हल है या कल्टीवेटर है उन आपने बढ़िया जुताई करे, पाटो लगा आपने मिट्टी ने भुरभुरी कर ले। और जुताई में पहला आपने प्रति अपा एकड़ की बात करा तो 8-10 टन जी की गोबरी जी की खाद है वह भी अपन ने डालनी चाहिए, और साथ मान लो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन है, 50 किलोग्राम फास्फोरस है, 60 किलोग्राम पोटास है प्रति हेक्टर खेत में ने मिलाना चाहिए। एक बात आवे कि भाई किसान भाई पालक की खेती करनी चाहे तो किन बातों ध्यान देवे, सगलो सु पहला ओ ध्यान रखना है कि भाई एक एकड़ रे वास्ते लंगे टंगे 8-10 किलो जिको बीज है वो पर्याप्त रिया करे। बीज अपा काम में लेवा किसान भाई तो प्रति किलो बीज ने 2 ग्राम कार्बनडाजीम रे साथ 2 ग्राम जिको थायरम है उन्हों अपने उपचारित करना चाहिए, और वही करता भगत पौधों पौधा जिकी खेती है वह 1-1.5 सेंटीमीटर और लैण लैण जिन्हें आप पंक्तियों पंक्ति का वह 15-20 सेंटीमीटर अपने रखनी चाहिए। एक बात रो ध्यान रखना है कि जो बीज है वो 2.5-3 सेंटीमीटर गहरे महीने बोवना चाहिए, घणो ऊपर भी नहीं बोवनो और घणो ऊंडो भी अपने बीज ने नहीं बोवना चाहिए। रुपई वजह जो हमें बरसात रो मौसम है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और जे मान लो छाटा छुड़को नहीं हुए तो मान लो अपने सिंचाई भी करनी चाहिए, और हर 5-7 दिन पचे अपने खेती माते सिंचाई लगो लग अपने करनी चाहिए। हम बात आवे कि भाई आपा खेत तैयार भी कर लियो, बीज भी अपन ले लिया, हम बात आवे कि भाई उन्नत किस्म जिकी है वे आपा पाल के मैंने किसी किसी लेवा। पूसा हरित, जोबनेर ग्रीन, ऑल ग्रीन, हिसार सिलेक्शन 23, पूसा ज्योति, पंजाब सिलेक्शन, पंजाब ग्रीन ए सीरे रूप से पालक री उन्नत किस्म है वे आप काम में ले सका, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेसी मात्रा में आप पालक रो जिको उत्पादन है वो आप ले सका। हमें बात आवे कि भाई हमें आप पाल को बात यहाँ कर दिया, और पहलो मान लो किसान भाई रे पाल को खेतर महीने बायोडो है और बरसात रो मौसम है और पालक रे महीने किसा किसा जी का रोग है लाग जावे, और रोकथाम आप किन तरह से कर सका, नियंत्रण आप किन तरह से रख सका। एक पालक रे महीने पत्ता काटने वाली सुंडी कीट आया करे, आ कहीं करे पत्तियारो जिको हरो पदार्थ है उन्हें आपने खा जा, और जिकी पत्तियां है पाल केरी उन रे महीने आपने ठंडा कर दे। तो हमें बात आवे कि भाई किसान भाई रोकथाम रे वास्ते कहीं कर सके।

आप सुन रहे थे कृषि जगत। हम आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गणगौर।

0: राम राम सा।
1: जोधपुर आकाशवाणी रा गणगौर कार्यक्रम में आप सगला श्रोताओं रो कार्यक्रम सुनबा वाली सगली सखिया रो घणो ही घणो स्वागत।
0: और आज आपके साथ है आपकी सखिया
1: कोमल राठौर
0: और पूनम देवड़ा ले हाजिरा आज रो गणगौर विशेष कार्यक्रम करुणा री पुकार
1: बेजुमान जीवा रो संसार।
0: आज आप बात कराला उन बे बोलारी जिकारी पीर सुनवा वालो कोई नहीं है, उन आवारा और बेसहारा पशु पक्षियारी जिको हर मिनक सु बस थोड़ी सी दया और हेत प्रेमरी आस राख्या करे है।
1: बिल्कुल पूनम जी, आपानी धरा तो हमेशा सुई जीव दया और हिवड़े री उदारता सारू जानी जी जावे और आपनो थोड़ो सो भगत थोड़ो सो प्रेम उन जीवा री जो के जीवन है वो बचा सके। इन्हीं आसू आज रो कार्यक्रम आप ले रहे हैं तो जीव जनता सु जुड़ी बहुत सी बातें और बहुत सी जानकारी सगला ने आप बतावा। पहली शुरुआत कराई कार्यक्रम री और सुनावा एक प्यारो सो गीत।

0: तू क्यों बोलो रे आधी रात रो रात रो।
1: बिल्कुल अपना जीवन रे मायने पूनम जी, पशु पक्षी रो भी जो को महत्व है वो खासो है, क्योंकि देखो परिस्थिति की संतुलन री बात करा तो बनायेड़ो राखे ही है, साथ ही साथ अपना जो को मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य है बिना भी बेहतर बनायेड़ो राखे। और आपने पतो है कि पूनम जी जब आप तनाव में हुआ तो एक बार थोड़ो टेम आप पशु पक्षियों ने देर देखो, कोई आवारा पशु पक्षी री मदद कर देखो, अपनो जो को तनाव है बिना आप भूल जावा, अपनो जो को दिमाग है वो हल्को जी। और कोई भी अकेला पंशु भी परेशान है तो बस सबारी एक आदत बन जाए कि आपा जावा बंक साथे टाइम बितावा और कुछ ये लागसी की कुछ अपनापन है जो को अपन है वारे साथ जुड़ेड़ो देखे।
2: बिल्कुल सही क्यों कोमल। और यू भी देखो अपनी भारतीय संस्कृति में अपा देखा यहाँ कि लोग जब भी सुबह उठे तो सुबह उठते ही सब पहले गाय और कुत्ता ने रोटी लेन बारे घूमन वास्ते निकल जाया करे है। और कीड़िया रे जो कीड़ी नगरो सींचे है, सुबह सुबह पशु पक्षी रे जो दाना पानी रा पात्र रखियोड़ा हुआ घर रे बारे वे सब भरे है, तो जब पशु पक्षी आया करे है घर रे करने तो एकदम मैंने देखने जो चिड़िया री चहचहाट है जो कलरव है वो सुनने मन ने कितने सुकून और शांति मिले कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: और यू भी आपने आठ देखा तो पशु पक्षी ने बहुत ही ऊंचो दर्जो दिया गया, मिनक और पशु रोजी को ना तो है वो सदियों ही पुराणो है और कुदरत या सनक धरती जी की है व मिनकारी जितनी है उतरी पशु पक्षी भी है।
1: बिल्कुल है। और आप प्रकृति की बात करी तो प्रकृति और पशु पक्षी बीच रेवन सु अपने जीवन रो जो को सच्चो चक्र हुआ करे वो अपने समझ में आवे, क्योंकि जिस अपने पर्यावरण रे प्रति आप जिम्मेदार तो बना ही हाँ, साथ साथ जका जीव जंतु है वारा जितना भी प्राकृतिक आवास है बाने जद आप देखा तो इको टूरिज्म ने बढ़ाया करे, प्रकृति के करीब जावनो जो को मौको है वो अपन ने मिले। और अपन ने पतो भी है कि ये जगत जता भी जीव जंतु है जितनी भी प्रकृति है ये अपनी अर्थव्यवस्था ने भी समर्थन देवे। और जी कि आप पालतू जिनावरा री बात करा गाय है भैंस है तो वे सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था री जकी रीढ़ है बा हुआ करे, जिया की कुत्त है बिना आप वफादारी रे वास्ते जाना, बिल्ली ने शांत आवाज और स्वभाव शांत स्वभाव रे वास्ते जाना, और बिल्ली तो देखो अनाज रा गोदाम ने गोदाम हुए तो बाने चूहा है सांप है बिच्छू है वाने वासु दूर रखे और किया करे कि बिल्ली है वा एंजाइटी है जकी दूर करिया करे।
2: बिल्कुल सही क्यों कोमल। और छोटा जीव जिका हुए और जिका पंखी रू आया करे वे नुकसानदायक जिका कीड़ा मकोड़ा आया करे वेने खैर फसल री रक्षा करिया करे।
1: बिल्कुल।
2: गाय भैंस ऊट भेड़ और बकरिया जिकी वे मिनक री जीविका रो बहुत ही मोटो आधार है। पशुओं मिलन वालो जिको दूध है घी है छाछ है वे अपने मानव शरीर वास्ते बहुत ही लाभदायक है। और गाय जी को गोबर और मूत्र है वो जमीन ने उपजाऊ तो बनावी है, साथ साथ औषधीय दवाई रे मायने भी गाय रो मूत्र है जिको काम में लिया जावे। और जिका फल फूल पशु पक्षी खाया करे है उनारा बीज विस्तार सागे दूजी जगह पहुंचे जिनसु नवा बूटा और जंगल है जिको उग जाया करे है।
1: बिल्कुल।
2: तो कुल मिलाने प्रकृति ने हरी भरी राखण रे मायने पशु पक्षी रो बहुत ही मोटो योगदान है।
1: बिल्कुल। वारो संरक्षण करनो और वारे प्रति संवेदनशीलता दिखानो अपनी ही जिम्मेदारी है।

0: फैसिलिटी की बात करी तो आपका क्लिनिक ने मायने किन किन तरह की सुविधाएं हैं, या फिर जब कोई गंभीर रूप से कोई पशु पक्षी घायल हो जावे या कोई लीर आवे तो भी ट्रीटमेंट की काई प्रक्रिया है, कोई तरह की जो कि आधुनिक सुविधाएं हैं वे आप रही क्लिनिक ने मायने किन किन तरह रही है?
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। हमारे क्लिनिक में ब्लड टेस्ट की सुविधा है, सब तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं। एनिमल्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स है वो ब्लड टेस्ट का है, ताकि अंदर के ऑर्गन्स किस बीमारी और किस प्रकार की बीमारी है उसके बारे में अपन पता कर सकें। इसके अलावा हमारे पास एक्सरे मशीन है, डिजिटल एक्सरे मशीन है, जिससे हम डिजिटल बोन्स वगैरह की स्थिति पता कर सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ पर बेहतरीन सुविधा के साथ ऑपरेशन सर्जरियाँ करी जाती है,
0: जी
1: और जानवर को जितनी ज्यादा हो सके सुविधा उपलब्ध करवाते हैं।
0: बिल्कुल। और जी की कोई पालतू और लावारिस पशु हुए, पशु पक्षी हुए, वाले वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण और जो को कृमि नाशक दवा हुआ करे वह आरे वास्ते कितनी जरूरी हुए हुए और आम जनता नहीं रे प्रति कितो जागरूक होना चाहिए?
1: देखो पशुपालक भाइयों ने, मैं बहुत बड़ी जानकारी देना चाहूँ कि कृमिनाशक और जो वैक्सीनेशन है ये लाइफ का बहुत बड़ा फेज है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। हर कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज नहीं है, पर उनका बचाव है। बचाव उनका सिर्फ वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीन कराओगे तो ही वो बीमारी से आप अपने एनिमल्स को बचा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए एंथ्रेक्स हो गई, HS हो गई, लंगड़ा बुखार हो गया, रेबीज हो गया, ये कुछ इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं जिनका बचाव और मात्र सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन ही है। दूसरा, आपका जानवर स्वस्थ रहे, उसमें कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो, गाय भैंसों में दूध उत्पादन बराबर बना रहे, इसके लिए हमें इनके कृमि नाशक दवाइयाँ देना बहुत जरूरी होता है। और कृमि नाशक दवाइयाँ हर 6 महीने में देनी चाहिए। इससे जानवर बीमार कम पड़ते हैं, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, और मिल्किंग वाले जो एनिमल्स है उनमें दूध बराबर बना रहता है।
0: बिल्कुल। और अब आपने जोधपुरी बात करा तो जिया की बार उनाड़ो है बहुत तेज पड़िया करे, तावड़ो घणो कड़को रेवे, तो तावड़ा रे मायने घायल जगह पक्षी है बे सड़क माते फिरता लावारिस जिनावर है, बारे मायने सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां है या तकलीफ है जो को देखने मिले?
1: देखो अभी गर्मी का सीजन है, गर्मी बहुत ज्यादा है। जोधपुर सन सिटी पैलेस है, तो यहाँ पर लू लगने का जो चांसेस है एनिमल्स के अंदर वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। गर्मी से पशु को बचा कर रखो, टाइम दिन में 3-4 बार पानी पिलाओ, और जो लवारिस जानवर है उनके लिए भी अपने घर के बाहर पानी की थैली भर के रखो। पशु पक्षियों के लिए घर के ऊपर कटोरे के अंदर पानी भर के रखो, ताकि वो गर्मी से बच सके।
0: बिल्कुल। और इन टाइम में किन तरह की बीमारियां ज्यादा देखने मिलिया करे?
1: देखो अभी मानसून आने वाला है, मानसून के अंदर मैगट्स के ज्यादा केसेज हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा केसेज हो जाते हैं, और लार्ज एनिमल है उनके अंदर FMD, HS, VQ ये सब बीमारियां अभी आने की वाली हैं। तो इनके बचाव के लिए पहले से वैक्सीनेशन चल रहा है, अभी सरकार की तरफ से भी चल रहा है और बाहर भी करवा सकते हैं आप। तो वैक्सीनेशन करवाओ, डिवर्मिंग की दवाइयां दो, बारिश के तुरंत बाद में लीवर टॉनिक जरूर पिलाओ अपने एनिमल्स को। ज्यादा गीले में नहीं रहे, कीड़े कीचड़ में नहीं खड़े रहे एनिमल्स। साफ सफाई जरूर मेंटेन करो, ताकि मच्छर और मक्खी नहीं होगी तो बीमारी कम फैलेगी। जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ मच्छर मक्खी होगी और वहाँ बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ संक्रामक बीमारी होती है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में मक्खी या मच्छर वेक्टर के रूप में काम करते हैं, पहुंचाते हैं उसे एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर। तो ऐसे में साफ सफाई रखो, ज्यादा गीला नहीं हो, और एनिमल्स को सूखा रखो, बारिश में भीगने मत दो, सर्दी जुकाम बुखार वगैरह हो जाता है और स्किन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। खासकर विशेष डॉग्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करो, उनको बारिश में भीगने से बचाओ।
0: बिल्कुल। और जिया की कोई सड़क माते कोई ने घायल पक्षी या पशु मिल जावे बीते मतलब तुरंत काई कार्यवाही है जो की करनी चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो की नहीं करनी चाहिए?
1: देखो सबसे पहले तो जब भी आपको कोई घायल पशु पक्षी दिखे, तो अगर वो धूप में पड़ा है तो उसके लिए सबसे पहले छाया की व्यवस्था करो, फिर उसको पानी पिलाने की कोशिश करो, और साथ के साथ ही आपके नजदीकी कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे वेटनरी डॉक्टर हो, उनसे संपर्क करो, ताकि रेस्क्यू टीम आए और उसका इलाज करे और उसको टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी लाइफ बचाई जा सके। नहीं करनी चाहिए उसके लिए यह कि अपनी मर्जी से किसी प्रकार की कोई केमिस्ट के बताई हुई दवाई नहीं देंगे, जब तक डॉक्टर की सलाह नहीं लेंगे किसी प्रकार का कोई इलाज अपनी तरफ से नहीं करेंगे। अपनी तरफ से हम सिर्फ उसको छाया में रख सकते हैं, उसको पानी पिला सकते हैं, और उसको कोई दूसरे जानवर अटैक नहीं करे इसलिए उसको एक जगह साइड में रखेंगे। पक्षी है तो उसको आप दूसरे जानवर से, बिल्ली और डॉग से बचाने के लिए कहीं सेफ जगह रख दो।

0: छायादार जगह रख दो ताकि रेस्क्यू टीम आए तब तक वो सेफ रहे। इसके बाद में रेस्क्यू टीम हमारी जाती है, वो अपने आप उसकी केयर करती है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। अगर वो वहीं ठीक होकर उड़ने की स्टेज में हो या चलने की स्टेज में हो कोई एनिमल्स, तो वहीं इलाज हो जाता है। नहीं होता तो फिर हम अपने रेस्क्यू सेंटर में उसको ले आते हैं और यहाँ पर इलाज करते हैं। जब ठीक होता है तो वापस फिर छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: ना है, इनमें भी भावनाएं हैं।
1: जी
0: जब भी कोई जानवर बीमार होगा, उसकी आंखों में से पानी आएगा, वो सुस्त हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, बार बार रंभाएगा, पेन शो करेगा, ये सिम्टम्स अपन देखते हैं। और उसकी नाक सूख जाती है, मजल सूखी हुई मिलेगी गाय भैंसों में, बड़े एनिमल्स में। डॉग खाना पीना बंद कर देता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये सब चीजें अपन सिम्टोमेटिक देख के और डॉक्टर से संपर्क करेंगे और उनका इलाज करवाएंगे और उनकी पीड़ा कम करने की कोशिश करेंगे।
1: बिल्कुल। और अगर जोधपुर रे मायने कोई भी आम नागरिक सड़क माते कोई घायल जानवर या पशु पक्षी देखे और या फिर वाने मिले से आप रो जो को सेंटर है भी सुखिया संपर्क कर सके या फिर वाने रेस्क्यू करण सारू उन्होंने काई करना चाहिए?
0: देखो, कहीं भी आपको कोई भी अगर लवारिस जानवर मिलता है, मेरे सेंटर के अलावा भी यहाँ पे 2-3 रेस्क्यू सेंटर और है, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आप ले जाके छोड़ भी सकते हैं, मेरे यहाँ भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कहीं भी सुविधा मिल जाएगी आपको। बस आपको उस जानवर को देखना है और उसकी मदद करनी है। टोल फ्री नंबर है 9696967396। इस नंबर पे आप कॉल करिएगा, एम्बुलेंस आएगी और अपने आप उस एनिमल्स को लेके जाएगी, या आप भी वहाँ डायरेक्ट जाके छोड़ सकते हैं। 9414364401 इसमें भी कॉल करेंगे तो आपके वहाँ पर रेस्क्यू की सुविधा मिल जाएगी।
1: तो डॉक्टर साहब, आज आप सगला श्रोतावा ने पशु पक्षी देख रेख वास्ते और हमारा अधिकार प्रति बहुत सी बहुमूल्य और संवेदनशील जानकारी दी हो, तो चलता चलता आप सगला श्रोतावा ने आप पशु पक्षी रोजमर्रा री सार संभाल सारू और उनारे साथे क्रूरता रोकन सारू कई सीख देनी चाहोला?
0: मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि पशु पक्षी और चाहे जानवर हो, ये सब अपनी तरह है, इनमें भी जीने की इच्छा होती है, इनको जीने देना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। भगवान ने अपन को इंसान बनाया है, अपना ये फर्ज बनता है कि इन बेजवानों की जितनी हो सके अपन मदद करें, इनके खाने पीने की सुविधा करें, क्योंकि इनका देख रेख करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, और इंसान इनके साथ जब क्रूरिटी पे उतर जाएगा तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि जहाँ भी कोई भी लवारिस जानवर दिखे उसको खाना पानी की व्यवस्था करवाओ, कई भी पक्षी दिखे उनके लिए भी दाने पानी की व्यवस्था करो और उनके रहने करने की सब व्यवस्था देखो।
1: बिल्कुल डॉक्टर कालूराम जी, आपकी मेहनत और आपरो प्रयास बेजुबाना रे वास्ते वरदान सुकम नहीं है। तो आज आप जोधपुर आकाशवाणी में फोन रे माध्यम से जुड़े, आप पशु पक्षी से जुड़ी अनमोल जानकारी सभा ने दीवी, जकी कई जिनावरा रे वास्ते नयो जीवन दान बनेला। तो कालूराम जी, आपरो कीमती भगत निकाल आकाशवाणी से जुड़िया, इनरे वास्ते आपरो पूरा जोधपुर आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे आकाशवाणी सदस्यों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक ही बात, लवारिस जानवर कहीं भी दिखे, चाहे लवारिस हो चाहे पेट हो, उनकी केयर करो, इनको भी जीने का अधिकार है और इन सबकी मदद करो। धन्यवाद।
2: तो सखिया, अबार आपा सुन रहे हैं कोमल राठौर री फोन रे माध्यम से बातचीत पशु चिकित्सक डॉक्टर कालूराम चौधरी सु।

0: तो पूनमजी जी राजस्थान री वीर भूमि सिर्फ मिनखारा सूर्य वास्ते ही नहीं, साथ ही साथ जितना भी पशु पक्षी है और पर्यावरण रो जो को अटूट प्रेम है बीरे वास्ते भी जानी चे। और अपने अठे एड़ा भी मीनक हुआ है जका आपरी सुख सुविधाएं ने छोड़ बेजुबान जीनावरा री सेवा ने ही आपरो एक मकसद बना लियो। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते बात करा तो एक अलग मुकाम पे हासिल करया है, जिदी जानकारी भी आप सगला श्रोता मैंने दे दा कि बहुत सा लोग है जका आज जीनावरा रे वास्ते आपरो नाम है जो को कमायो है। जिया की पीरा राम धायल की बात करा जका जालोर रहे, वे घायल वन्य जीवारा मसीहा रे रूप में जानिया जाया करे और जका पूर्व सीआरपीएफ जवान भी हा और वे एक सड़क दुर्घटना रे मायने घायल जीवा ने तड़प तो देकर आपरी नौकरी तक छोड़ दी और एक छोटू सो गैरेज मैकेनिक रे रूप में काम कर घायल जीनावरा रो इलाज शुरू करियो। और वे अब तक लगभग 1180 सु ज्यादा वन्य जीवारी जान है जो कि वे बचा चुके हैं। और आरे जकिया निस्वार्थ सेवा है भी ने देखकर ओई लागे कि मतलब वे आपरी सेवा जी जान सुधी है। और इर वास्ते वाने अवार्ड भी मिलियो, अवार्ड सु सम्मानित भी करियो जिन्हें अर्थ हीरोज अवार्ड कियो जावे। और आज वे सरकार सुधियेड़ी जकी जमीन है वीरे माते ही आपरो ओ काम है जो को जारी राख रहे।
1: बिल्कुल सही कोमल। अगली बात अपा करा अनिल विष्णु री जी का हनुमानगढ़ सु है और कार्ले हिरणरा जी का रक्षक है माना जावे है। और अनिल जी है जी का पिछले 3 दशक सु थार रेगिस्तान में काले हिरणा ने बचाने रहे जी को एक अकेले योद्धा रे रूप में मैंने लड़ाई लड़ रहा है। शिकारियों के खिलाफ मुहिम चलावता हुआ 50 सु ज्यादा पंचायत में जागरूकता फैलाई और शिकारियों के खिलाफ 200 सु ज्यादा मामला दर्ज करवाया जिनमें कई ने तो सजा भी दिलवाई गई है। और इन अलावा वन्य जीव रे पानी पीने की व्यवस्था करने वास्ते वे 60 सु ज्यादा छोटा बड़ा तालाब है जी का बनवाया है।
0: बिल्कुल। और यही काम कर रहा है बारा रा अनीता चौधरी जी जका फॉरेस्ट गार्ड है। और अनीता चौधरी जका है पुरुष प्रधान मान्यो जावन वालो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रो क्षेत्र रे मायने एक साहसी मुकाम में हासिल करियो। वे अपनी जान जोखिम में डालर इंसानी बस्तिया में घुसर जता भी खतरनाक जीव हुए वारो रेस्क्यू करण रो काम करियो है। वे आज तक 550 सु ज्यादा रेस्क्यू कर चुके हैं और इनरे वास्ते वाने सम्मान भी मिलियो है।
1: और बात करा संजय सिंह जयपुर सु तो एनिमल वेलफेयर रा वे अंतर्राष्ट्रीय नायक है। जयपुर विख्यात संस्था डॉक्टर संजय सिंह ने जयपुर और आसपास के क्षेत्र में आवारा कुत्ता बीमार बिल्लियां और घायल ऊंटा रे इलाज रे वास्ते वे आपरो पूरो जीवन है जी को समर्पित कर दियो। और आवारा पशु रे इलाज स्ट्रीट डॉग से नसबंदी कार्यक्रम रेबीज उन्मूलन में

0: और अतुलनीय योगदान है और रॉयल कॉलेज ऑफ वेटरनरी सर्जन्स इंटरनेशनल अवार्ड सुवर्ण सम्मानित करियो गयो है।
1: बिल्कुल, और ये है आपने तृप्ति जैन सिरोहिरा जकी आपरी अच्छी खासी नौकरी छोड़ पिछला साल सो घायल बीमार और बेसारा पशुआ रही रेस्क्यू कर रहा है वारो इलाज रो काम कर रहा है। वी आई है सुलोचना जतिन सिंह जका झुंझुनूरा है वे पक्षुअरी जकी तारण हारे वे जाने जावे और झुंझुनूरा जका बुरासर गाँव है वटेरा वे रेवन वाला है वे कई साल सु पशु पक्षी ने रेस्क्यू कर रहा है वारी देखभाल कर रहा है और वे आपरा चित्र रामायण कोई भी बेजुबान पक्षी अगर मृत्यु भी हो जावे तो वे सम्मानजनक तरीका से वारो अंतिम संस्कार भी करे।
0: बिल्कुल, और बात करें नटपत सिंह राजपुरोहित बाड़मेर सु वेण ग्रीन मैन भी कहो जावे है और पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जड़ा शुष्क इलाका में जटे गर्मी रो तापमान 48 डिग्री से ऊपर चलियो जाया करे वटे नटपत सिंह जी बेजवान पक्षी और आवारा पशुआ वास्ते पानी री व्यवस्था रो जिम्मो उठायो है। चिलचिलाती गर्मी में पक्षी और वन्य जीव पासरे वास्ते अटी उठी भटके है तो इनरे वास्ते वे भामाशाह और आपरे सहयोग से अकेला ही अलग अलग तालाब बनवाया है और 500 से ज्यादा पानी रा टैंकर डलवाने परिंदारी जान बचाई।
1: बिल्कुल, और एड़ा ही आपरो काम करियो है सवाई माधोपुर रा सूरजबाई मीना जका रणथंभौर रा पहला महिला नेचुरलिस्ट गाइड बनिया जका जंगला रा पशु पक्षियारी आवाज पहचानन में और वारा पद चिन्ह ने ट्रेक करन रे मायने महारत हासिल करिया है और बे वन्य जीवारे प्रति जागरूकता फैलावन वास्ते आने बेस्ट लेडी गाइड जेड़ा पुरस्कार सु नवाजो भी गई है और आपरो जीवन समर्पित करियो विमला राजपुरोहित बीकानेर रा जका आपरे घर री छत में एक बर्ड केयर सेंटर में बदल दियो बे पतंगरी डोर जितना भी कटोरा कबूतर चील या पक्षी हुआ करे वारो खुद इलाज करे और हर साल गर्मियों में सैकड़ों मिट्टी रा परिंडा बांटन रो काम करे।
0: जैसलमेरी सुखपाली पंवार गोडावंडी पहली महिला रक्षक के रूप में मानी जावे है। मरुस्थल अत्यंत दुर्लभ और विलुप्त प्राय पक्षी गोडावंड ने बचाने के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क रे सुदासरी जड़ा बेहद कठिन और दुर्गम क्षेत्र रे मायने सुखपाली पहली महिला वन रक्षक के रूप में मायने तैनात हुई जटे पानी और बुनियादी सुविधा की भारी कमी है वटे अकेले रहन सुखपाली गोडावंड अंडा और उन्होंने प्राकृतिक आवास ने शिकारे और जंगली जानवरों से बचाया और मरुस्थल रे वन्य जीवारी सुरक्षा में मुस्तैद सु काम करने रे वास्ते वन्य जीव प्रेमियों के बीच उनारो एक अलग ही सम्मान है।
1: बिल्कुल पूनम जी, और ये सब जता भी है वो साबित करियो है कि बेजुबान पशु पक्षियों के प्रति संवेदना और वाने बचावन रो जो जज्बो है वो कोई भी सोच और परिस्थिति की सु बड़ो हुआ और पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखने वास्ते कोई बड़ो पद ही नहीं है, बड़ो दिल है वो होना चाहिए।

0: तो पूनम जी आपा तो प्रयास करा ही, हाँ लोग भी प्रयास करे तो अपनी सरकार भी जकी है बेवारा पशु पक्षियों रे वास्ते आप रो प्रयास कर रही है, वारा संरक्षण रे वास्ते, इलाज और वारा कल्याण रे वास्ते कई योजनावां और कई नीतियां है जकी शुरू कर रखी है। तो वारी बात करा जी चिकित्सा और आपातकालीन रेस्क्यू योजना री बात करा, तो कोई भी चल पशु चिकित्सा इकाई जिया की आवारा जानवर है विने दुर्घटना सु या फिर कोई गंभीर बीमारी सु बचाने रे वास्ते शुरू करेड़ी योजना है, जिमें टोल फ्री नंबर 1962 यानी 1962 पर आप कॉल कर सूचना दे सको, जिमें डॉक्टर री टीम रे साथ में एम्बुलेंस सीधी मौका माथे पहुंची और घायल पशुओं मुफ्त में इलाज करियो जाए।
1: बिल्कुल कोमल, और गौशाला विकास एवं दैनिक सब्सिडी योजना है जिनमें शहरा और गांवारे भीतर आवारा गाय ने सुरक्षित राखण वास्ते पंजीकृत गौशाला ने सरकार द्वारा 50 रूपया प्रति बड़ा पशु और 25 रूपया प्रति छोटा पशु प्रतिदिन रे हिसाब से वित्तीय अनुदान दियो जावे है ताकि उन्हारे चारे पानी रो जो संकट है वो दूर हो सके है।
0: बिल्कुल, और अगली योजना है नंदीशाला जन सहभागिता योजना, जिरे मायने सड़का पर लावारिस घूमने वाला जितना भी सांड है बेल है वाने आश्रय देवन रे वास्ते सरकार हर पंचायत मिति स्तर माते बड़ी नंदी सहेलर निर्माण करवा रही है, जिरे मायने सरकार है बे 90% यानी 90% तक री वित्तीय सहायता दे।
1: और पशु चिकित्सा देखभाल और बचाया गया जानवर के लिए वित्तीय सहायता योजना भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित इन राष्ट्रीय योजना के तहत देश भर में मायने पशु आश्रय और अस्पताल में घायल या बचाया गया आवास जानवर ने ऑपरेशन दवाया और भोजन के वास्ते वित्तीय मदद दी जावे।
0: बिल्कुल, और पशु जन्म नियंत्रण और टीकाकरण योजना रे मायने जितना भी आवारा पशु है वारी आबादी मानवीय तरीका सु नियंत्रण रे वास्ते निःशुल्क नसबंदी करी जावे वाने एंटी टीका भी जितना भी कुत्ता हुआ करे वाने लगाया जावे, और विशेष आवारा डॉग फीडिंग साइट भी नीति भी एक शुरू करी है जिरे मायने सेरारा हर वार्ड रे मायने कुत्ता रे वास्ते या कोई भी दाना पानी री जकी भी जगह है बा बनाई जाए ताकि वाने नियमित भोजन है जको मिल सके।
1: बिल्कुल, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, इन योजना रे तहत राज्य रे सगला सरकारी वेटरनरी अस्पताल में आवारा और पालतू जानवर रे वास्ते लगभग 200 से ज्यादा तरह री जरूरी दवाइयां, ऑपरेशन रो सामान और जीवन रक्षक टीका री पूरी तरह से मुफ्त सेवा उपलब्ध कराई जावेला।
0: बिल्कुल, और राजस्थान रा 12 जिला रे मायने पूनम जी देश रो पहलो हाईटेक सरकारी सहायता प्राप्त पशु पक्षी अस्पताल और ट्रामा सेंटर भी बनायो गयो है जेठे देश भर री आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और बड़ो ऑपरेशन थिएटर और दुर्घटनाग्रस्त पशु पक्षियों के वास्ते विशेष आईसीयू और वेंटिलेटर भी उपलब्ध है जो कराया गया है।
1: मल्टी स्पेशलिटी वेटरनरी क्लिनिकल सेंटर राज्य सरकार द्वारा अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिला रे मायने नया मल्टी स्पेशलिटी पशु चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जा रहा है, अटे पशुवारा जटिल रोगारे निदान रे वास्ते आधुनिक लैब भी बनाई जा रही है।
0: और साथ ही साथ है पतंगबाजी रे दौरान मांझा सु कटेड़ा जितना भी पक्षी है और बीमारी सु जूझ रही है जितना भी परिंदा है वारो इलाज रे वास्ते अठे पक्षी रोग विशेषज्ञ जवाई बर्ड रेस्क्यू सेंटर और बर्ड पार्क में मिल जावे और जठे आरो इलाज भी करायो जावे।
1: और राज्य पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक ए जिला स्तर पर स्थापित बड़ा सरकारी अस्पताल होवे है, अटे गंभीर रूप से घायल आवारा पशुवारे वास्ते 24 घंटा आपातकालीन सेवा, बड़ा ऑपरेशन, एक्सरे, सोनोग्राफी और

0: इंडोर वार्डरी सुविधा होया करे।
1: बिल्कुल। और राज्य की बात करें तो राज्य रे मायने जयपुर नाहरगढ़ है, जोधपुर माचिया है, कोटा है, बीकानेर और उदयपुर में भी विशेष रेस्क्यू सेंटर राजस्थान सरकार शुरू कर मिलिया और अठे इलाज रे वास्ते विशेष रेस्क्यू वार्डरी सुविधाएं है, जीरो लाभ भी है जीव जंतुआ रे वास्ते आप उठा सका है।

0: धूल इंदा ले बच्चे चढ़े जद बिरखा भरपूर, यानी जद चिड़िया माटी रे मायने नहावे और कीड़िया अंडा ले दीवार पर चढ़े तो समझा समझनो कि बारिश है जकी होने वाली है।
1: बिल्कुल। और कागलो गजत घर्री मुंडेर माथे बोले तो इनने पावना आवण रो शुभ संकेत मान्यो जावे है। और एक कोचरी यानी विशेष प्रकार की चिड़िया होया करे, गांव सु बाहर जाता वक्त अगर कोचरी बाई कानी बोले तो शांति री निशानी है, और जय दाई कानी बोले तो काम अधूरो रेवण रो संकेत है।
0: बिल्कुल।
1: और नीलकंठ एक पक्षी होया करे तो सफर माथे जाता थका अगर नीलकंठ पक्षी दिख जावे तो घणो शुभ और कारज सिद्ध होवण रो लक्षण है होया करे है।
0: बिल्कुल। और टिटुड़ी देवे इंडा चार, नवखंड निपजे माग विचार, यानी टिठेरी जकी पक्षी है अगर चार अंडा देवे 20 साल किया करे कि देश में खासी और भरपूर बारिश हुआ करे। भी आप कागला री बात करी तो सूखा रूंख पे अगर कागलो बोले तो यहाँ किया करे कि काल पड़े या विपदा तोले, मगर अगर कागलो जो को है वो सूखा पेड़ या ठूंठ पर बैठ कर काउ काउ करे तो किया करे कि अकाल या फिर कोई अनिष्ट होमंडो जो को संकेत है वो मान्यो जावे।
1: बिल्कुल। और कोई भी काम जाता वक्त अगर सामी चील उड़ती दिखे तो उन काम में जीत और लाभ री पक्की आस होया करे है।
0: किया करे कि सामो कीड़ी कंसारी आवे पूरो दीवो काम बनावे, यानी शुभ काम माते निकलती टेम अगर कीड़िया रो झुंड आप मुंह में अंडा लेर दबाए आवे या फिर अपने जाती दिखे तो काम पूरो होन रो जो को सगुन है वो उत्तम मानी जे।
1: बिल्कुल। और नेवड़ो अगर सफर में जाता वक्त बाई सुदाई कानी निकल जावे तो अपार धन और शुभ वेड़ा रहे जिको सूचक होया करे है। और रस्ते में मेंढक रो कोदनो या कछुए रो दीखनो रास्ता संकट टलने रो संकेत मान्यो जाया करे है।
0: और रात कुके कागलो दिन में कुके स्याल के बरसेला मेव लोग के टूटेला काल, यानी अगर कागलो रात ने बोली और गीदर जो को है वो दिन में रोवे तो प्रकृति ने भारी फेर बदल मान्यो जावे, क्योंकि या तो अकाल परसी या फिर भारी बारिश वैसी। बिल्कुल। तो एडी जत्ती भी कहावता है के बताए वे भी बहुत सी पशु पक्षियों से जुड़ी है, बहुत सा सगुन है जका पशु पक्षियों से जुड़ी है, एडी बहुत सी बात और भी है जकी आप सु करा ला सुना आपने एक प्यारे से गीत।

तो कोमल, पशु पक्षी रा जी का मेला है वे भी बहुत ही जगचावा है अपनाटे, और वन श्रृंगार है विन माते तो बहुत सा गीत भी बनी उड़ा है अपनाटे। और लोक जीवन में पशुआ ने सिर्फ धन को नहीं बल्कि परिवार और सदस्य माने जाए कर, अठेरा लोग आपरे ऊंट घोड़ा बछड़ा और बलदा ने घने लाट कोट सु सजावे और मेला रा मायने लेट जाए करे, इनारो श्रृंगार है जिको वो देखने लायक हुए करे। और कई तरह रा गहना वे बनावे इनारे वास्ते, जान गोरबंद हो गयो तो ऊंट रो सबसे मुख्य गहनो जो काच मणिया

0: और कोड़िया सुए जी को बढ़िया करे है।
1: बिल्कुल
0: मोरा और मोरखा है जी को ऊट और घोड़ा रे मुखरे माते बांधी जन वाली सुंदर रस्सी और कलाकृति होया करे है।
1: बिल्कुल और पिलाण है जो को ऊंट री पीठ माते बांधर रखन वाली एक नक्काशीदार काठी हुआ करे और घूगरा और नेवरी हुए जो को पशुआरे पगारे मायने बांधी जन जावन वालों एक घुंगरू हुआ करे जिका सु चालती बकत सुंदर आवाज आवे।
0: और कतरिया होया करे ऊट री चमड़ी माते कैची सु सुंदर डिजाइन बनावन वाली चीज जिन्हें जट कतराई भी कहया करे है।
1: बिल्कुल और कई मेला भी अपना अटे पशु वाला भरीजे
0: तो पुष्कर मेलो अजमेर रमायने ई मेला रमायने ऊटा रो सबसे मोटो ले बेच होया करे। विदेशी सैलानी अटे रो ऊटा रो श्रृंगार प्रतियोगिता देखने वास्ते बहुत ही भारी संख्या रमायने आया करे है। और बात करा तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौरी तो नागौरी बलद री बिक्री सारू और जग में घणो चावो है।
1: बिल्कुल और मल्लीनाथ पशु मेलो है जो तिलवाड़ा बाड़मेर में भरीजे जकी थार पार कर गाय और मालानी जकी नस्ल नस्ल हुए घोड़ारी वीर सारू वो मोटो ऐतिहासिक मेलो है। और भी यही है चंद्रभागा पशु मेलो झालावाड़ रो जो को हाड़ोती क्षेत्र रो मेलो जो को है वो मालवी नस्ल रा जका पशु है वीणा सारू जानी जे।

0: तो पूनम जी सगला ने ओई कहणो है कि सांचो मीनक बोई है जो को बेसारा जी नावरा रो दर्द आपरा हिबड़ा में महसूस करे।
1: जी कारो कोई कोनी उनारो आश्रो बनो बेसारा पशुआ पे दया राखनी ही ईश्वरी साची भक्ति है।
0: बिल्कुल।
1: तो अब घड़ीरी सुइया इशारो कर रही है कि अब मैं आज रही सफर ने अटई विराम देवा, पर चालता चालता मैं ओई कहनी चाहवा कि आज रो विशेष कार्यक्रम करुणा री पुकार बेजुबान जीवारो संसार
0: किन्द्रे वास्ते ही ले रहे हाँ, क्योंकि
1: सृष्टि पर जितो हक आपनो है बितो ही आ बेजुबान पशु पक्षियों रो भी है। आरी तकलीफ समझर अपा आजीवा ने नयो जीवनदान दे सका हा। ये अनमोल सीख और जीव दया ने आप दिला में संजोता हुआ आज ये कार्यक्रम में ही आपकी दो सखिया
0: कोमल राठौर
1: और पूनम देवड़ा।
0: आज रा कार्यक्रम री प्रस्तुति और संयोजन हो
1: राम निवास चोयल।
0: अब इंद्र साथ ही आपनी दोनों सखिया ने दिलाओ सीख। चाला
1: राम राम, राम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल है। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केन्द्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कुनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कुनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रूपये का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के 1 नेता, 1 वार्ड सदस्य, 1 किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए।

0: चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केन्द्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षो में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या

झील। तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए

अब प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल है, कल कल नदियां बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहाँ के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने।

0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।
0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
0: बात स्पष्ट है। उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने

0: साथ ही अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्स पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सायकालीन सभा आरंभ होती है। युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है उनका पसंदीदा कार्यक्रम युवा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और आज का वक्त है आपका मन पसंदीदा सेगमेंट यानी कि फरमाइश शो का। इस शो में बजेंगे वही गाने जो हम आपके लिए फरमाइश के जरिए भेजे गए हैं। तो तैयार हो जाइए यादों के साथ, अपने फेवरेट गानों के साथ, मेरे साथ माधवी और
1: मैं अदिति मौर्या। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, क्योंकि अगले एक घंटे तक रहेगा सुरों, संगीतों और आपकी फरमाइशों का खूबसूरत संगम। तो चलिए सुनते हैं ये पहला म्यूजिकल ट्रैक।

0: माधवी, ये जो आज का हमारा कार्यक्रम है, आज का जो प्रोग्राम है, वो काफी स्पेशल है युवानी, क्योंकि आज हम फरमाइश, हमारे जो लिसनर्स की फरमाइश है वो पूरी करते हैं। तो कितना अच्छा लगता है ना, जैसे हम किसी की लव्ड वंस जो हमारे लिसनर्स है उनके लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम है, तो वो लिसनर्स जो है अपना फेवरेट सॉन्ग किसी को डेडिकेट कर सकते हैं।
1: कितना अच्छा लगता है ना अदिति, जब आपकी कोई मनपसंदा फरमाइश को पूरी करे, वो भी ऑन एयर जाके आपका पसंदीदा गाना बजाए।
0: हाँ।
1: तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारी कोई एक प्यारी सी विश थी जो बस पूरी कर दी है।
0: हाँ।
1: तो अगर आप ही श्रोताओं अपने लव वंस को या अपने दोस्तों को या परिवार में किसी को कोई गाना फरमाइश करना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं मेल इस मेल एड्रेस पर,
0: जो है yuvapasandjodhpur@gmail.com पर,
1: और आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर के नंबर है 9413329359। मैं नंबर वापस रिपीट करती हूँ, 9413329359।
0: तो जल्दी से अपनी फरमाइश भेज दीजिए, क्या पता आपके लव मंथ्स आपके परफेक्ट सॉन्ग का इंतजार कर रहे हों।

0: दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम जो है युवा पसंद का, और इसमें हम पढ़ते हैं आपकी फरमाइशें। तो देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास फरमाइश आई है वो आई है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोकेलाल वर्मा की ओर से।
1: और आई है छत्तीसगढ़ से देवशंकर, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा टामुरिया की ओर से।
0: तो चलिए इनकी पसंद का ये पहला गीत सुनते हैं।

0: सब लोग सुनते जरूर हैं, पर हर किसी को समझने वाला कोई नहीं मिलता।
1: माधवी, पर जो हमारे आज के लिसनर्स हैं ना, वो सही जगह पर आए हैं, क्योंकि हम उन्हें जरूर समझते हैं और उनकी प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ प्ले करते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई फरमाइश है तो आप हमें भेज सकते हैं। आपको पता है हमारी मेल आईडी है yuvapasandjodhpur@gmail.com पर, और फरमाइश की अगली कड़ी में देखते हैं अगली फरमाइश किसकी ओर से आई है। वो आई है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित अहूजा की ओर से।
0: चंद्रनगर सहारनपुर से आई है कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी की ओर से।

0: दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से कार्यक्रम युवाणी में। और जो अगली फरमाइश आ रही है हमारी, वो है मूवी हीरोपंती से एक गाना। और उसकी फरमाइश आई है छोटी बलिया मुंबई करजत से, अहमद भाई फूल वाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इकबाल अहमद फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले परिवार की ओर से।
1: और हमारी अगली फरमाइश है सबलपुर ककीर से फागुराम ज्योति ओसवनी यादव की ओर से। और दोस्तों, अगर आप भी अपना फेवरेट गाना हमारे फरमाइशों में सुनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9413329359। मैं नंबर रिपीट करती हूँ 9413329359 पर।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी, नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
5: शाम की हवाओं में एक अजीब सी बात होती है, ये आवाज कम और एहसास ज्यादा लाती है।
6: दोस्तों, इसी एहसास और यादों को ताज़ा करने आ रहा है ये अगला गीत, जो है मूवी तुम मिले से, और इसकी फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा,
5: छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश पाटिल।
6: तो चलिए इनकी फरमाइश का ये गीत सुनते हैं।

0: और अब फरमाइश का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं हमारी अगली फरमाइश आई है सुरदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह और सुरभि शाह की ओर से।
1: और मौको बाड़मेर से प्रहलाद सारन और जोधपुर से जमाल, इनकी फरमाइश आई है ये इस गाने के लिए।

0: बड़ा असर डालता है और वो शब्द है इंटेंट यानी नीयत।
1: बिल्कुल माधवी, हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक वजह होती है, कभी पढ़ाई करने की, कभी किसी की मदद करने की और कभी अपने सपने पूरे करने की। लेकिन सवाल ये है कि हमारी नीयत क्या है?
0: सही कहा, कई बार रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता लेकिन हमारी नीयत और कोशिश हमेशा हमारे हाथ में होती है। जब इंटेंट साफ

0: हाथ में होती है। जब इंटेंट साफ होता है तो काम करने में एक अलग ही एनर्जी नजर आती है।
1: और दोस्तों, इंटेंट सिर्फ बड़े फासलों में ही नहीं, छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देता है। जैसे किसी दोस्त की बात ध्यान से सुनना, घर में मदद करना या किसी को एक मुस्कान देना दे देना।
0: बिल्कुल, कभी कभी एक अच्छी नीयत से किया गया छोटा सा काम भी किसी का पूरा दिन बेहतर बना सकता है।
1: तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए यही है कि आप जिस काम में आज अपना समय दे रहे हैं उसके पीछे आपका इंटेंट क्या है।
0: इसी सोच के साथ बढ़ते हैं एक अगले गीत की तरफ, लेकिन
1: उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो फरमाइशी कार्यक्रम है हमारा, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और अपनी फरमाइश भेजनी है, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारी मेल आईडी पर, जो है yuvapasandjodhpur@gmail.com पर, और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं,
0: और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9413329359।

इश्क सोच के गीता की गीता दिल देके दिल लैण दी लालच करी ते तू लिया जे तूने प्यार भी लालच नाल कीता

0: दोस्तों, इतने बेहतरीन गानों की फरमाइश आती है ना, तो फरमाइश करने वालों के साथ साथ सभी श्रोताओं का भी दिन खास बन जाता है। तो आइए अब सुनते हैं अगली फरमाइश का ये गाना, जो आया है फरमाइश कर्ता की ओर से, गांव फ्रासी हिसार से, राजकुमार ड्यूडी, प्रमोद कुमार ड्यूडी, पुष्पेंद्र कुमार ड्यूडी।
1: बिहार डुमराव से असम टुकटुक, लड्डू वली अंसारी और आमना प्रवीण की ओर से।
0: तो चलिए इनकी पसंदीदा गीत सुनते हैं।

0: फोन की बैटरी लो हो तो चार्जर ढूंढते हैं, पर जब दिल लो हो तो खुद को ही इग्नोर कर देते हैं।
1: पर जो लिसनर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं ना, उनकी बैटरी अब हाई होने वाली है, क्योंकि जो अगला गाना आया ना वो थोड़ा एनर्जेटिक है, और उसकी जो फरमाइश आई है वो आई है हनुमानगढ़ टाउन रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान की ओर से,
0: और आई है गाजियाबाद से मनोहर लाल गांधी और डोडी छत्तीसगढ़ से मास्टर कबीर डोम और राधिका पूजा और डोमी,
1: रघुनाथपुरा जिला श्रीनगर श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की ओर से ये गीत।

0: और इसी के साथ आज हमारा फरमाइश का शो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आपकी पसंद के गाने और हमारी बातें पसंद आई होगी। अपनी फरमाइश हमें ऐसे ही व्हाट्सएप पर भेजते रहिए, क्योंकि आज मैं थी आपके साथ माधवी और मेरे साथ थी
1: दोस्तों मैं हूँ अदिति मौर्या। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिएगा। आज के प्रोग्राम की प्रस्तुति थी राजेश लामरोड़ द्वारा और संयोजन दामनी सोलंकी का। नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6 बजने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। उसके पश्चात 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रूपये से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है फिर से आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र में। आप सुन रहे हैं अपने पसंद के कार्यक्रम और इन्हीं कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी हम आपको देते हैं कार्यक्रम विवरण में। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप जानेंगे पहले आज के शेष एवं कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

पहले जानें आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी उनके प्रसारण समय के साथ। गैर फिल्मी नगमों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत रात 9:15 पर प्रसारित होगा।

आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से कार्यक्रम खेल पत्रिका रात 10 बजे रिले किया जाएगा। काश्तकार भाई बहनों के लिए चौपाल सजेगी साय 7 बजे और सीमाड़ेरी गूंज का प्रसारण होगा शाम 7:30 पर। फिल्मी गीतों का आनंद श्रोता उठा सकेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे 9:30 पर और 10:30 पर। अब जानें कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी उनके प्रसारण समय के साथ। कल सवेरे 6:05 पर श्री रामचरितमानस कार्यक्रम आप और हम मिलकर सुन सकेंगे। साथ ही 6:15 पर भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन सुविचार के संग। सवेरे 7 बजे होगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। 8:30 पर होगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। सुगम संगीत के कार्यक्रम का श्रोता आनंद उठा सकेंगे कल सवेरे 10:30 पर और दोपहर 12:30 पर, साथ ही रात को 9:15 पर भी। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक संगीत ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल सवेरे 10 बजे और दिन में 12 बजे।

ग्रामीण महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम गणगौर। इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा कल दोपहर 1:15 पर। कृषि संबंधी जानकारी कृषि जगत के कार्यक्रम में काश्तकार पा सकेंगे दोपहर 1:15 पर। चर्चा का विषय रहेगा दलहल फसलों पर उन्नत किस्में। युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी कल शाम 5:00। श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। इसके अंतर्गत आपने सुना कार्यक्रम संबंधी जानकारी, जानकारी उनके प्रसारण समय के साथ। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आप समूह स्वर में सुने ये देशगान, सरफरोशी की तमन्ना।

0: समूह स्वर में श्रोता अभी सुन रहे थे देशगान। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुने संस्कृत समाचार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। पश्चिमबंगे भाजपा नेतृत्वे सर्वकारेण प्रथमं पूर्णं अर्थसंकल्पनापत्रं उपस्थापितं, यस्मिन् सामाजिक कल्याणं आधारभूत संरचना विकासं आजीविका सृजनं समेत्य अनेकाः महिला केन्द्रित योजनाः सन्ति घोषिताः। सुरक्षा समाह्वानानां विषये चर्चयितुं नवदिल्ल्याम् अद्य ब्रिक्स राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातृणां सम्मेलनं समारब्धम्। आर्थिक सम्बन्धान् इतोऽपि सुदृढीकर्तुं विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः स्वकीयेन समकक्षेण सह चर्चार्थं मंगोलियादेशं सम्प्राप्तवान्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय राज्ययोः कृते अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अपि च अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायां अर्जेण्टीना दलम् अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य आर्लिंगटन नगरे ग्रुप जे क्रीडायां ऑस्ट्रिया दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ

0: आगत्य प्रसृताश्च जनाः अन्तः एव अवरुद्धाः अभवन् इति कथ्यते। एषः एकः क्रयणसंकुलम् आसीत् यस्मिन् प्रशिक्षणं क्रीडाक्षेत्रादिकम् आसीत्। अग्निसुरक्षादलानि आरक्षकाः जनपद प्रशासनस्य अधिकारिणश्च उद्धारस्य निष्कासनस्य च प्रयत्नान् आरब्धवन्तः। केचन जनाः कोचिंग इत्यस्य शौचालये प्रच्छन्नं भूत्वा आत्मानं रक्षितवन्तः। केचन जनाः प्रथमतलाद् कूर्दयित्वा स्वप्राणान् रक्षितवन्तः। रक्षादलेनापि तान् रक्षितम्। यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरः स्वदलस्य वर्धमानस्य आन्तरिक द्वन्द्वे डाउनिंग स्ट्रीट इत्यत्र स्वस्य कार्यावधिं समाप्य लेबर पार्टीति दलस्य नेतुः पदात् सहैव प्रधानमन्त्रिणः पदात् त्यागपत्रस्य घोषणाम् अकरोत्। स्वस्य त्यागपत्र वक्तव्ये श्री स्टार्मरः द्विवर्षात् प्राक् डाउनिंग स्ट्रीट इत्यत्र स्वस्य आगमनं जीवनस्य गौरवपूर्णतमं क्षणत्वेन स्मृतवान्। कोटिशः जनानां जीवनं परिवर्तयितुं लक्ष्यं स्वीकृत्य राजनीतौ प्रविष्टवान् इति सः उक्तवान्।
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete.
0: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय राज्ययोः कृते अतिवृष्टेः रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना उद्घोषितास्ति। विभागेन श्वः पर्यन्तम् उपहिमालये पश्चिमबंग कर्नाटक तेलंगाना केरलम गोवा ओडिशा तथा देशस्य उत्तरपूर्वीय भागस्य पृथक् पृथक् स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानमपि ख्यापितम्। अनेन सहैव विभागेन अद्य हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड मध्यप्रदेश महाराष्ट्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रेषु विद्युत गर्जनम समेत्य झंझावात तथा तीव्र प्रचंड वायु संभावना च व्यक्तीकृता। अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अर्जेंटीना दलम् अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य आर्लिंगटन नगरे ग्रुप जे क्रीडायाम् ऑस्ट्रिया दलं सम्मुखीकरिष्यति। भारतीय समयानुसारं रात्रौ सार्ध दश वादने क्रीडायाः आरम्भः भविष्यति। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिमबंगे भाजपा नेतृत्वे सर्वकारेण प्रथमं पूर्णम् अर्थसंकल्पनापत्रम् उपस्थापितम्। सुरक्षा समाह्वानानां विषये चर्चयितुं नवदिल्ल्याम् अद्य ब्रिक्स राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातृणां सम्मेलनं समारब्धम्। आर्थिक सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः स्वकीयेन समकक्षेण सह चर्चार्थं मंगोलियादेशं सम्प्राप्तवान्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय राज्ययोः कृते अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। अपि च अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अर्जेंटीना दलम् अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य आर्लिंगटन नगरे ग्रुप जे क्रीडायाम् ऑस्ट्रिया दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से सुने हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
3: ये समझदारी समृद्ध नारी।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य केवी राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार

0: सरकार ने दिशा 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम इस साल पहली अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 साल तक की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा। 255 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुलभ और मजबूत बनाना है। ये देश की 16 सतत विकास लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है। इसे विकसित भारत 2047 के विजन से भी जोड़ा गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार दिशा 2.0 में प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय वितरण के लिए विधि संजीवनी नाम का नया घटक पेश किया गया है। टेलीलॉ के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर वीएलई की ओर से 2.5 लाख सामान्य सेवा केंद्रों के नेटवर्क से सभी लोगों को मुकदमों से पहले मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। साथ ही कानूनी जागरूकता और साक्षरता के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान चलाए जाएंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की आज बैठक हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इसमें समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग ले रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां बैठक का मुख्य विषय है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीक की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर केवी राजू की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की गई। इसके तहत हर जिले में आकांक्षी उपखंडों को जोड़ते हुए स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने की बात कही गई। इससे आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़ सकेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और निवेश के अवसर मिलेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने सीएसआर निवेश से संरक्षित वन क्षेत्रों में विकास पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज सवाईमाधोपुर में राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र की साझेदारी से वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता और इको टूरिज्म पर अच्छा काम किया जा सकता है। 2 दिन के इस कॉन्क्लेव में राज्य के संरक्षित वन क्षेत्रों में सीएसआर के माध्यम से किए जाने वाले कामों पर चर्चा की जा रही है। राजस्थान एटीएस ने जयपुर से जैश ए मोहम्मद से कथित रूप से जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पकड़ी गई बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नाम की ये महिला सवाईमाधोपुर जिले की मूल निवासी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये लंबे समय से देश विरोधी नेटवर्क के लिए काम कर रही थी। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आरोपी महिला को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 27 जून तक रिमांड पर भेज दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज जयपुर में समान नागरिक संहिता UCC को लेकर प्रेस वार्ता की। श्री पटेल ने कहा कि इससे समानता की भावना को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने UCC लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विधेयक लाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
1: राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी। और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में ही किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई बहुत जल्दी से जल्दी इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
0: वहीं श्री बेढम ने कहा कि यूसीसी संविधान के अनुरूप है, ये लैंगिक समानता की दिशा में भी अहम है।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता UCC राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया है।

0: चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा है कि जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल में प्रसूताओं के उपचार में पूरी गंभीरता बरती जा रही है। विशेषज्ञों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर के मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
1: इंजेक्टेबल जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं, जो 25% अलाउड है, उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका जो है हम उस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल और थोड़ा डिहाइड्रेशन, जो गर्मी पड़ रही है, और जो ये दो तीन चीजें ही हैं। तो हमारी डॉक्टर्स की टीम, मैंने जयपुर में भी गायनेकोलॉजिस्ट को और इनको बुलाया, डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी, तो सब पॉइंटर्स जिन्हीं पे आ रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसका एम्स की टीम ने भी जांच कर ली और हम भी जांच।
0: प्रसूताओं के स्वास्थ्य को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ बीएस जोधा और अन्य डॉक्टरों के साथ बैठक की। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की परिवेदनाएं सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह तक सभी विद्यालयों में शिक्षक लगाने के प्रयास किए जाएंगे।
2: 1 जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं, और 1 जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाएं।
0: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने आज अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने बोर्ड के 41वें मुखिया के रूप में कमान संभाली। बोर्ड प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ ने उन्हें चार्ज सौंपा। श्री राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए नई शिक्षा नीति के समुचित क्रियान्वयन पर जोर देने की बात कही।
3: इस समय दो प्रकार की योजनाएं हैं, कि हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो। दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा, ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए। तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं, तो साथ में उनका भौतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त हुए डॉ संतोष आनंद ने निष्पक्ष परीक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद वर्तमान में भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वे जल्दी ही आरपीएससी सदस्य के रूप में पदभार संभालेंगे।
4: प्राथमिकता ये है कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, आरपीएससी कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई इफ और बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
0: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन देखने और डाउनलोड करने का मौका दिया है। आयोग सचिव ने बताया कि इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 6 जुलाई से 27 जुलाई तक आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने आज राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से भेंट की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत भी मौजूद रहे। भेंट में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सीकर जिले के रामगढ़ सेठान क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। रामगढ़ सेठान थानाधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि दुर्घटना सड़क किनारे खड़े ट्रोली और तेज रफ्तार ट्रेलर के बीच टक्कर से हुई। घायल व्यक्ति को चूरू रेफर किया गया है। उधर श्रीगंगानगर के सत्यम नगर में एक निर्माणाधीन भवन में करंट लगने से आज 2 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। आज विश्व ऊंट दिवस है। ये दिन दुनिया के कई हिस्सों में आजीविका के लिए ऊंटों के महत्व को बताता है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाने वाला ये जीव शुष्क क्षेत्रों का महत्वपूर्ण पशुधन है और भारत का गर्व माना जाता है। सहन शक्ति और सेवा का प्रतीक ऊंट लाखों लोगों के जीवन का सहारा है। ये कई दिनों और हफ्तों तक बहुत ही कम पानी के साथ जीवित रह सकता है और इसीलिए इसे रेगिस्तानी यात्रा के लिए आदर्श माना जाता है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऊंट को संस्कृति और

और परंपराओं का वाहक बताते हुए लोगों से इसे अपना आदर्श साथी मानने का आग्रह किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने हर नागरिक तक न्याय की पहुंच अधिक सुलभ और मजबूत करने के लिए दिशा 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग के सदस्य केवी राजू के साथ बैठक कर जिला आधारित विकास मॉडल पर चर्चा की। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर विधेयक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, कोटा, बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामले अलग अलग हैं, इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख शिव कुमार वशिष्ठ ने तैयार किया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भरतपुर में जिला स्तरीय समारोह विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के बंद बारेठा पहुंचकर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बंद बारेठा की पाल का निरीक्षण किया और परियोजना के विस्तार कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से निपटने के लिए बेहतर योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग की शासन सचिव और जिला प्रभारी सचिव आनंदी ने भरतपुर का दौरा कर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों के बीच समन्वय के साथ गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा। संभागीय आयुक्त नलिनी काठोतिया ने संभाग स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत, विभागीय समन्वय और उद्योगों तथा आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। उन्होंने विद्युत संबंधी शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर निर्वाचन विभाग की ओर से एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत सरकारी और निजी संस्थानों, कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में भरतपुर को पायलट परियोजना में शामिल किया गया है। स्किल डेवलपमेंट फॉर यू कार्यक्रम के तहत युवाओं की क्षमता और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के सलाहकार डॉ आई बी सुब्बा राव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने युवाओं का डाटा तैयार कर उनकी रुचि और स्थानीय रोजगार की संभावनाओं के अनुसार प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से ब्लॉक स्तर पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्राम पंचायतों में विकास और जन कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा की गई। आमजन को राहत देने के लिए जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टे, नामांतरण, निर्माण स्वीकृति, उपयोग परिवर्तन, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित अनेक कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर और शहर में वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वैर उपखंड के सरसेना गांव और भरतपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी में किसान कल्याण, आयुष्मान भारत, पक्के आवास, सैन्य सुविधाओं और अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। महात्मा गांधी वेटनरी कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 500 युवाओं, विद्यार्थियों और किसानों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी स्वास्थ्य, जैविक खाद, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण से संबंधित जानकारी दी तथा किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने शहर में जल निकासी व्यवस्था से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य ड्रेन के निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की तथा बरसात से पहले जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने भरतपुर अचनेरा फोरलेन सड़क चौड़ी करने के काम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त होती है।
2: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली

खास समाचार। केंद्र सरकार हर नागरिक तई न्याय रिपूक बत्ती उम्बत्ती सुलभ करावन सारू 2.0 ने मंजूरी दी। ई योजना ने 5 साल माए लागू करी जायला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग रा सदस्य केवी राजू रे साथ बैठक करने जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता UCC माथे विधेयक बनावण ने उच्च स्तरीय समिति बनाई। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कयो कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामला न्यारा न्यारा है आने एक दूजाऊ जोड़ने नी देखा जावना चाहिए।

समाचारों के साथ है मैं शंभू सिंह और अब है समाचार विगतवार। केंद्र सरकार दिशा 2.0 योजना ने मंजूरी दे दी है। वो कार्यक्रम इस साल 1 अप्रैल और 31 मार्च 2031 तक 5 साल तैयारी अवधि रह सारू नुआ रूप में लागू करो जायला। 255 करोड़ रूपया रा वित्तीय परिवहन वाली ई योजना रो मकसद हर रहवासी तय न्याय री पौ सुलभ और मजबूत बनावनो है। आ देश रा 16 सतत विकास लक्ष्य री प्रतिबद्धता ने आगे बढ़ावे है। इनने विकसित भारत 2047 रा विजन हुई जोड़ी जा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुजब दिशा 2.0 माय प्रौद्योगिकी सक्षम न्याय वितरण सारू विधि संजीवनी नाम रो नुओ घटक पेश करी जो है। टेली लोरी मार्फत ग्राम पंचायत थर माथे वीएलई कानियो 2.5 लाख सामान्य सेवा केन्द्र रा नेटवर्क रू सगड़ा लोगों ने मुकदमा माय पहला मुफ्त कानूनी सलाह दी जायला। साथ ही कानूनी जागरूकता और साक्षरता सारू ऑनलाइन और ऑफलाइन अभियान चलाया जायला। नई दिल्ली में ब्रिक्स रा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए री आज बैठक हुई। 2 दिन री ई बैठक री सदारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रिया है। इनमें समूह रा 11 सदस्य देशों रा सुरक्षा प्रमुख हिस्सो ले रिया है। आ देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात भेड़ा है। अबार माए गैर पारंपरिक हिफाजती चुनौतियां बैठक रो खास मुद्दो है। इनमें राष्ट्रीय हिफाजत रा खतरा ने तेजियों बदलता स्वरूप और उभरता सुरक्षा जोखिमा माए नई तकनीक री भूमिका माथे चर्चा करी जावे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नीति आयोग रा सदस्य प्रोफेसर केवी राजूरी मौजूदगी माए एहलकारा रे साथ मीटिंग करी। मुख्यमंत्री रेवास माते हुई ई बैठक में विकसित राजस्थान रा संकल्प ने पूरो करण सारू जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी जी। इन रे तहत हर जिला में आकांक्षी उपखंडा ने जोड़ता स्थानीय जरूरता और संसाधन मुजब विकास योजना बनाने की बात कही जी। आमाय माली गतिविधियां री रफ्तार बढ़ सकेला साथ ही स्थानीय थर माथे रोजगार और निवेश रा मौका मिलेला। जंगलात महकमारा मंत्री संजय शर्मा सीएसआर निवेश ऊ संरक्षित वन हल्का माए विकास माथे जोड़ दियो है। श्री शर्मा आज सवाई माधोपुर माए राज्य थर्रा सीएसआर कॉन्क्लेव रा उद्घाटन सत्र माए बोल रहा है। वना कहो के जंगलात महकमो और कॉरपोरेट हल्कारी साझेदारियों वन्य जीव संरक्षण जैव विविधता और इको टूरिज्म माथे चोखो काम करियो जा सके है। 2 दिन रा ई कॉन्क्लेव माए राज्य द्वारा संरक्षित वन हल्का माए सीएसआर मार्फत करिया जावन वाला काम माथे चर्चा करी जावे। राजस्थान ईटीएस जयपुर जैश ए मोहम्मद री कथित रूप जुड़ी एक महिला ने गिरफ्तार किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस री सूचना माथे पकड़ी जी बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा नामरी आ महिला सवाई माधोपुर जिला री मूल रहवासी है। शुरुआती जानकारी मुजब आ लांबा बगतू देश विरोधी नेटवर्क साथे काम कर रही। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी बतायो के यूएपीए एक्ट तहत गिरफ्तार करी जी। आरोपी महिला ने अदालत में पेश करी जा जठे उन्होंने 27 जून तक रिमांड सारू भेज दी जा है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज जयपुर में समान नागरिक संहिता यूसीसी ने लेर प्रेस वार्ता करी। श्री पटेल कहो कि इनमें समानता री भावना ने बढ़ावो मिलेला और साथ ही भेदभाव ने कम करण में मदद मिलेला। राज्य सरकार यूसीसी लागू करण री दिशा में कदम बढ़ावता विधेयक लावण सारू ऊंचा थर्री कमेटी बनाई है।

0: राजस्थान सरकार नागरिक संहिता कानून बनाने हेतु एक विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया। उसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिपति रही है, वो हमारी इस कमेटी की अध्यक्ष रहेगी और इस कमेटी का गठन विधिवत पूर्व में ही किया जा चुका है और उनसे अपेक्षा की गई कि बहुत जल्द से जल्द इस कानून पर सभी तरह का मंथन कर ये राजस्थान समान नागरिक संहिता बना करके पेश करें।
1: श्री बेडम कहो कि यूसीसी संविधान मुजब है और लैंगिक समानता री दिशा में अहम है।
2: भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित हो। समान नागरिक संहिता यूसीसी राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए कमेटी का गठन किया है।
1: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो है कि जोधपुर रा पावटा सैटेलाइट अस्पताल में प्रसूतवा रा इलाज में पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है, विशेषज्ञ की देखरेख में वारो इलाज करियो जावे। मीडिया साथे बतल में चिकित्सा मंत्री कहो कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर रा मामला न्यारा न्यारा है, आने एक दूजा जोड़ने नहीं देखा जावना चाहिए।
3: इंजेक्टेबल जो अभी जोधपुर के अंदर मार्केट से जो ये ला रहे हैं, जो 25% अलाउड है, उसकी जांच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसका जो है हम उस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं क्योंकि ब्लीडिंग और इंजेक्टेबल्स और थोड़ा डिहाइड्रेशन, जो गर्मी पड़ रही है और जो ये दो तीन चीजें ही हैं, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम, मैंने जयपुर में भी गायनाकोलॉजिस्ट को और इनको बुलाया, डॉक्टर्स को बुला के हमने बैठ के बात करी, तो सब पॉइंटर्स जिन्हीं पे आ रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है जिसका एम्स की टीम ने भी जांच कर ली और हम भी जांच।
1: प्रसूतवारा स्वास्थ्य ने लिए जिला कलेक्टर अशोक रंजन, मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा और दूजा डॉक्टरों के साथ मीटिंग करी, मामला री जांचारू कमेटी बनाई जी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज आपरा रहवास माते जन सुनवाई करी, इस दौरान वना लोगा री फरियादा सुनी और वाजिब निपटारा रा आश्वासन दिया। मीडिया साथे बतलमाए श्री दिलावर कहो के नुआ शैक्षणिक सत्र सारू जरूरी तैयारियां करी जा रही है, वना कहो के जुलाई रा पहला हफ्ता ताई सगली स्कूला माए शिक्षक लगाउन री कोशिश करी जावे।
4: एक जुलाई को ही कोशिश करेंगे कि हम सबको शिक्षक मिल जाएं और एक जुलाई को नहीं तो कम से कम 10 जुलाई तक तो सबको शिक्षक मिल जाएंगे और किसी प्रकार की समस्या न होगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षक हो जाएंगे।
1: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रा नुआ अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ आज अध्यक्ष रा ओहदा संभाल लियो, वना बोर्ड रा 41वां मुखिया रा रूप में कमान संभाली। बोर्ड रा प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ वाने कामकाज सौंपियो। श्री राठौड़ मीडिया साथ बतल में पढ़ेसरा रा समग्र विकास सारू नुवी शिक्षा नीति रा वाजिब क्रियान्वयन माथे जोर देवण री बात कही।
5: इस समय दो प्रकार की योजनाएं हैं कि हमारे राजस्थान के परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों का शैक्षिक उन्नयन किस प्रकार से हो, दूसरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा ये विद्यार्थी काल से किस प्रकार उनके अंदर और प्रेषित की जाए कि वो विद्यार्थी आगे चलकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हितकारक नागरिक के रूप में वो निकल कर आए, तो केवल परीक्षा परिणाम नहीं तो साथ में उनका भौतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, ये सब प्रकार का उन्नयन कैसा हो, इस प्रकार का प्रयत्न सबके सहयोग से करेंगे।
1: राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य ओदा माते नियुक्त हुआ डॉक्टर संतोष आनंद निष्पक्ष परीक्षा ने पहली प्राथमिकता बताया है। श्री आनंद अबार माए भीलवाड़ा रा माणिकीलाल वर्मा राजकीय कॉलेज रा प्राचार्य रूप में काम कर रहा है। खबर नवीसा साथ बतलमाए वना कहो कि वे बेगाई आरपीएससी सदस्य रा रूप में ओ दो संभाल लेवेला।
6: प्राथमिकता ये ही कि राजस्थान भर के जितने बच्चे मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप उनका स्थान मिले, ये हमारी सबसे प्राथमिकता रहेगी। समय पर कैलेंडर हमने जारी कर चुकी है, आरपीएससी कैलेंडर के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, इसमें कोई इफ और बट और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
1: बीएसएफ रा महानिरीक्षक एमएल गर्ग आज राज्य रा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास रे साथ मिलिया, इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सामंती मौजूद रिया, ई मुलाकात में न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जी। सीकर जिला रा रामगढ़ सेठान हल्का में आज सवारा एक सड़क हादसा में दो लोगों की मौत वेगी, वठे एक दूजो घायल वेगियो।

0: रामगढ़ सेठान थाना अधिकारी प्रकाश चंद्र बतायो के हादसों सड़क रे किनारे खड़ा ट्रोला रे तेज रफ्तार ट्रेलर बीच टक्करू वियो घायल ने चूरू रेफर करीजिया है। उठने श्री गंगानगर राज सत्यम नगर माय एक नुआ बन रहा भवन माय करंट लागणू दो लोगों की मौत वेगी। अरे मौसम राज्य माय लाड़ला कुछ दिनों चल रही प्री मानसून गतिविधियां लोगों ने हीट वेव और करड़ी गर्मियों आराम मिल रियो है। एक रे पछे एक लगातार सक्रिय वेरिया पश्चिमी विक्षोभों कई जिला माय आंधी बिरखारो दौर बनियोड़ो है। आज ही प्रदेश रा कई हल्का माय मौसम रो मिजाज बदलियो रियो। मौसम महकमा मुजब आंधी बिरखारी गतिविधियां जयपुर अजमेर और भरतपुर संभाग में 26 जून तक बनी रहने की आस है। इस दौरान कठे कठे धूल भरी आंधी ही चल सके है। दूजी कानी बीकानेर और जोधपुर संभाग में मौसम साफ रहने की आस है, फिर वही कुछ थोड़ा बादल छाए जा रह सके है। न अब आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। केंद्र सरकार हर रहवासी ताई न्यायरी पूग बत्तियों बत्ती सरल और मजबूत करण सारू दिशा 2.0 ने मंजूरी दी। योजना ने 5 साल सारू लागू करी जायला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग रा सदस्य केवी राजू रे साथ मीटिंग करने जिला आधारित विकास मॉडल माथे चर्चा करी। राज्य सरकार समान नागरिक संहिता UCC माथे विधेयक बनावन सारू ऊंचा तरी समिति बनाई। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो है कि कोटा बीकानेर और जोधपुर प्रसूता मामला न्यारा न्यारा है अने एक दूजाओं जोड़ने नी देखा जावना चाहिए। एंड रे साथ ही प्रादेशिक समाचार ओबलिट नठे पूरो वियो। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर।

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं और काश्तकार भाई बहन सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल। चौपाल में आज का विशेष है चिरमी। ये कार्यक्रम बस छोटे से इस अंतराल के बाद।
1: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
2: गांव ग्वार अर खेत खलियानरी बात मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्स। सिंजिया 7 बजिया सुनो न भूलो आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। लोसा हाजिर है राजस्थानी गीतारो फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी। चिरमी कार्यक्रम सुनाला सगला हेतलु श्रोता ने घने मानसू गुरविंदर बिश्नोईरा राम राम अर नमस्कार।

किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई। गांव खोखरा मारवाड़ जिला पाली सु कागज लिखे है सोहन दास वैष्णव लक्ष्मण दास युवराज खुशवंत भंवरदास ओम प्रकाश कालूदास विद्या देवी महिमा गुंजन और आना सगला घराड़ा। लवई सु गुलाब दास मानिकपुरी और आना साथी और कागज आयो है गांव गंगाणी सु जगदीश भाट आलम पड़ियार भिया राम किशन चुकी देवी और कौशल्या। और ईमेल आयो है गोपालगढ़ सु घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी। पवनपुरी बीकानेर सु भंवरलाल सोनगरा गीता रानी सोनगरा डॉक्टर सोनू दाइमा सरोज सत्यनारायण दाइमा अखिल मूलचंद सोनगरा सुनीता प्रथमराज हंसराज कृष्णा मुकेश सावित्री अंजलि अनुष्का लक्षिता अमीशा सोनगरा और अठेसुई आशीष जतीन और आना सगला घराला। और कागज आयो है गांव जेसला सु लिखियो है फूलाराम थोरी शिवलाल थोरी हरचंद राम थोरी मल्लू राम थोरी ओम प्रकाश भोजी दिनेश संतोष अर्जुन राम करीर और रेशमा राम फौजी। सादुल शहर सु ओम प्रकाश चौहान मन्नू प्रकाश शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। और कागज माने कन आयो है जोधपुर सु लिखियो है रघुवीर किशोर देवेंद्र सिंह जबर सिंह खींची और रतन सिंह खींची। गांव कंटालिया सु भीखाराम मौर्य सीता देवी मौर्य विजय प्रकाश गोमती माणक चंद मंजू देवी जयेश और मनीष मौर्य खींवसर नागौर सु कल्याण मल प्रभु राम वंशीलाल हेमा राम शोभा राम मौर्य और आना सगला साची। गांव मेलाना सु छेला राम मेघवाल रविन्द्र देवेंद्र अनीता और फूली देवी मेघवाल रमेश चंद्र चौहान मोहनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी और आना घराला माने ईमेल भेजियो है कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सु। और कागज आयो है रुड़कुली सु लिखियो है अनिल सिंवर गांव जेसला तहसील फलोदी सु राजा राम जंवर और आना साथी।

वारसू और कागदायो है लिखण वाला है हर्षिता रामेश्वर काना सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी। तो आप सबारी पसंद माते सुनो सा आ राजस्थानी रचना।

किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इपको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों

0: के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
1: तो साथियों ओहो माणो कार्यक्रम चिरमी, हमें कार्यक्रम और टाइम हो रही हो पूरो, तो आप साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दी रहा हो। राम राम।

सौंधी माटी री महक, खेत खलियान री खुशबू, गांव ग्वार री बाता जकी आपने गांव सु जुड़ियोड़ी है, बाता जकी आपा सु जुड़ियोड़ी है, बाता जकी आपने जीवन सु जुड़ियोड़ी है, आपना टाबरा सु जुड़ियोड़ी है, अर गांव रे विकास सु जुड़ियोड़ी है। सगड़ी बाता एक साथ, अर कार्यक्रम है चौपाल, सिंजिया 7 बजिया, सुनो ना भूलो, आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

काश्तकार भाई बहन अभी सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। चौपाल में आज का विशेष था चिरमी। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं सूर्य नगरी चैनल। अब अगला कार्यक्रम है सीमाड़ेरी गूंज।

मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: बचे बचा ले, जो कुछ बचे बचा ले।
1: अरे फाटक रखे छेड़छाड़ करे
2: राम
1: राम राम फाटक अरे फाटक रो कई है पाप काटे
2: अरे देखो नवला बात थे नी थे अपना बारे जगह नहुन गया नी गंगा।
1: अरे मैं तो गंगा नहेड़ो ट्रैक्टर हावड़ मैं गाल नो नी क्यों इन पापो काटियो खंदिया तोड़ दिया।
2: अरे खंदिया ही खातिर तोड़िया के अपने गांव सेवाराम जी चौकीदार सुखराम जी।

0: तिनाणी आया कारीगर।
1: और नवलाबा मैं तो दोनों ही इतना भला आदमी है, दिन भर काम करे और अपन गाड़ू गांव रहा है, चौमासो है खेत है। भाई उड़ा मैं के भाई नवलाबा ढाणी हालो थोड़ो घणो टीपा टाप कर दो, बाड़ारी भींत काटनी है कटी तेड़ हेड़ है तो थोड़ो बसा दू, पहले ठीक करवा लू, बढ़िया काम करे। और आप रे हुकराम जीरो दो रोकोटो है, दो रोकोटो आप रे मतलब है की दो घंटा रेस्ट कर लेवे, और इतना शरीफ सिंशियर है आप रे काम करता रहे भाई नवलाबा, अपन ढाणी ने रेडी रेट कर दे। कारीगर आया जाने क्यों थे पते क्यों कोनी गांव बुलाओ कारीगर,
2: दो दिन हूँ बाल कहीं गियो अने फाटका तोड़ा दी नारे तो कितो खोगल करी मार दे कुटिया में मेरा
0: मेरा अरे अरे डावला अरे
2: मैं अरे अरे
0: अरे
1: तो बढ़िया काम करे नवलाबा,
2: काम करे हो
1: शिवराम जी रे हुकराम जी के वे के बड़ी रोज बढ़िया जीमन जिमावे बढ़िया सब्जियां बढ़ावे न्याल लड़ाए तो
2: न्याल जड़ हो जड़ बुला लिया
1: क्यों काम बढ़िया कौन लगे थाने
2: काम तो घड़ी बढ़िया है खने कुंडा ने कौन ठा पड़ जा था नहीं
1: आने पोच लो हुक जी ने पूरे दिन माता में रोंगता उठ गया तगारिया ऊन सुन चर बजरी रही
2: हाँ तो दिल भूख मत दे दो रुपया बस इस काम आई
1: हाँ तो इस खातिर तो दो ही जना नहीं ले आई हूँ मैं क्यों थैंक यू का गांव रा कारीगर समझदार होना
2: अरे वाकई हाल में हो कौन के इन पहला काम ठीक करियो की कौन हूँ दो दिन मोड़ो आयो पर तो ही मोड़ो बेगे में काम कटी कटी तो क्या खोटो सीखो चल रहे हो
1: अब मैं ओंटरी जगह बात करी नहीं थे रोज रोज के हो के वो कौन लायो वो कौन लायो मैं ना
2: अम्बा लायो
1: हाँ लायो
2: तरबूजा लायो
1: नहीं तरबूजा कौन लायो
2: तरबूजा लायो
1: नहीं अम्बा लायो और दो किला केरी लायो
2: अरे मारे मैं कितनी चीजा मंगाई मैं ख्याल की कौन बात
1: है जकी मेन चीजा मंगाई ना देखो थे मन की हो के बाजरा रो तिल मूंग गवार थे क्यों का अरे हगड़ारी अपन है जकी थैलिया ले रावणी
2: बीज मंगे
1: सरकारी सर्टिफाइड थैली तो नवलाबा सब पहले देखो मैं बाजरा रही है ना HHB 67-2 HHB 197 MPMH 17 MPMH 21 MPMH 35 और MPMH 42 ए बाजरारी नई थैलिया किस्मा ले आयो
2: ओ न्यारी न्यारी
1: न्यारी न्यारी
2: हड़ रे हिसाब भाई
1: ए कहीं करा तीन तीन हड़ भावा देखा किसी बढ़िया वो बीस दिन अगली साल हगली यही ले आ
2: जा हाँ सी बात है
1: अब मैं तिल की ले रहा हूँ
2: खेत में लिख की कही क्या
1: नहीं बीर में लिख दे वहाँ के जिया पालटा है नी के भाई तीन हड़ रहे महीने फलानी किस्म फिर बाद में तीन आप भाटा रोप दे
2: भाटो है नान कर दीजिए
1: है नान कर दे वहाँ
2: भाटो मार लेकिन मेल दीजिए
1: हाँ तिल रिदे को नवलाबा RT 351 RT 372 और RT 392 तिल री तीन किस्मा लायो दो तो आपने अटे बाड़ी में बाय लेवा और एक थे पंजी ने कोई फौज साहब ने दे दीजियो
2: हाँ दे दे ओके
1: और देखो नवलाबा मोंगरी GM 4 GM 6 GM 7 और
2: वैज्ञानिक बनाया
1: ए वैज्ञानिक
2: हाजरियाला अनबे बनाया
1: हाँ
2: के कृषि विश्वविद्यालय
1: देखो अपने राजस्थान की जलवायु और परिस्थितियां बिने ध्यान में रखकर किस्मा तैयार करी ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सके अब देखो मोट लायो में काजरी मोट 4 काजरी मोट 6 RMO 257 RMO 2251 और गुवार की जगह लायो ना बे देखो अपन ते HG 220 और आ है जगी नवलाबा ओ कहीं लिखियोड़ो आर आगे कहीं है
2: RGC है कौन
1: RGC 1038 ए मैं किस्मा ले आई गो तो थोड़ा गणा मैं छाट
2: अरे मार गले की अरे कर
1: अरे हुक जी पानी ले जी हुक जी
2: अरे हुक जी इंदुक जी होगा पर हमारे बोबाड़ा की किर करतो फाटक उतारी हूँ पहला
1: अरे बहुत तो कहीं है गया करें करें
2: थार के गैस बन गई
1: गैस को नहीं हो
2: तो है कहीं तभी ठीक नहीं
1: अरे मैं थाने बार
2: हलको हाथ करा दू डॉक्टर बैठ कर ले जाऊंगा
1: हलको हाथ करियो थे
2: बहुत तो करियो कौन बहुत उन्होंने थार की फर्क पड़े
1: हूं लेवा हाथ कहीं छुला तपाई तपाई रिया का करिया कहीं
2: अरे भाई देखे के है टके टके की मजूरी करी हाथ को नहीं हथोड़ो है
1: हथोड़ो है
2: समझे नहीं हो
1: सनी देओल रो 8.5 किलो रखे हुए थारो तो 5-7 किलो रो है
2: अरे मैं हुई तैयार करियो उन्हें धर्मो जी मार कर लाए आके
1: अच्छा
2: क्या भाई इंश्योरेंस तैयार करो
1: तो बड़ी तो कहे नहीं बड़े धर्मो जी लाए बाद में थे खेत रे मैंने हल जोता है जन क्यों हल पकड़ सनी भाई।
2: हाँ बहुत करे भाई।
1: तो अजय कह होता नहीं नाव तो सनी तो बाद में पड़ियो।
2: हाँ हाँ बहुत पड़ियो जो पड़ गो। हाँ हमें यू है
1: गाणो जो कहो ना मैदान एक आतर होना।

0: तो मिलेड़ा भी अपने फिल्म जगत्र में ने बहुत ही बड़ा चरित्र अभिनेता अमरीश पुरी जी।
1: ओ ठीक ठीक ठीक
0: मुगम्बो खुश हुआ।
1: हाँ मोटोरी यहाँ क्या मैं तो भाई लागते ही अरे
0: खतरनाक
1: ही बन 10 लाख
0: आपने जोधपुर में फिल्मारी शूटिंग में मैं कई बार आयोड़ा है।
1: अरे वो मिली अड़ा भाई जेल में हुई ही नहीं।
0: हाँ
1: थाकवा
0: ने मदनपुरी जी रहते बेड़ा रिया कई दिन थे बॉम्बे में।
1: अरे हूँ भाई बेटे अमरीश पुरी की बात करे है
0: मदनपुरी जी रा छोटा भाई है अमरीश पुरी।
1: हाँ ठीक
0: मदन जी को नहीं थे कहता मैं जाऊँ मदन जी घर रुकू।
1: ठीक ठीक
0: तो देखो मैं गाणो ही खातर बतायो कि मदनपुरी जी रा छोटा भाई अमरीश पुरी जी है जगह फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ा कलाकार हुआ और नवला बाप बारी आज है जो की अपने जयंती है।
1: ओ ठीक ठीक भाई गणक का काम करन गया बे।
0: हाँ
1: मान तो देख देखो लागे को हेंद्रू पेड़ मिनक वह कही
0: वो थे डायलॉग कौन उन्हें जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी।
1: अरे वो की कौन बैठ कहूँ है गुंडा रोल गिना करता नहीं है जी।
0: लेकिन आप जो की दिल वाले दुल्हने ले जाएंगे फिल्म है ना फिर मैंने चरित्र अभिनेता हीरोइन रे पिताजी रो रोल करियो लोग कहे की मतलब अमरीश पुरी जी यहाँ को भी रोल कर सके
1: कर सके। देखे भाई अदाकार फनकार कलाकार नहीं
0: गुंडा टाइप थे करो नी फिल्मा में।
1: हाँ तो मैं करियो नी है कह दे के धरती माता जी की चीजा है बे मिन करे समझ में आवे
0: ठीक है।
1: गगन में है जी की बात समझ नहीं दो रही है।
0: अच्छा आसमान रही।
1: हाँ
0: ओहो
1: ठीक है नी क्या भाई देखे गगन में कहीं कहीं है आसमान में और धरती में तो कहीं कहीं है अपन की ठाक है कोई पार।
0: तो अपन अमरीश पुरी जी फिल्म रो कोई गीत होना है तो नवला बा
1: मैं बड़को होना थर गन है तो होना वगन भाई मन
0: तो मैं निकाल होना।
1: हाँ होना
0: लो होना

0: वाह भाई दे गगन ये समझे तो बात बने
1: बात बने।
0: वाह भाई वाह, तो अमरीश पुरी जी ने कोटि कोटि नमन करा और मंदेरा फूल छड़ा सौ का काम कर ज्ञान बन दे कर मैंने घड़ा ही है जो कह नहीं के ही की बड़ा
1: मैं आज जब बताए तो आज कौन कौन जलमिया कौन कौन फोन
0: किया बता।
1: तो देखो नवलाबाद सब पहले नाम है गणेश जी घोष और आज है जगी आरी जयंती है ये भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता क्रांतिकारी और राजनीति की है।
0: ओहो घोष बोस भट्टाचार्य क्या नहीं घड़ा क्या नहीं बैनर्जी है जिको कह टैगोर है बंगाल में हो यार बंगाल हूँ जिको कह नहीं भैया मसाल चली है देश री आजादी में हंग आगीवान री है
1: रिवी
0: तो कह नहीं गणेश जी घोषी चौका काम कर गया पर बते पोरा ने धोक देवा कोटि कोटि नमन करा मंदेरा फूल
1: आगलो मैं तान बताइयो अमरीशपुरी जी आज जयंती है जगह थेबा ने नमन कर लियो और आगलो जो को नाम है नी नवलाबा टॉम ऑल्टर ठीक है एक आई हाँ अपन हिंदी फिल्मारे रंगमंच रा अभिनेता और मूल रूप वो अमरीका रहा है देखो
0: अमरीका रहा कलाकार ने भाई देखे कोई है जिसको सरद रोक नहीं सके जान आपकी कला बतावे
1: आज है ना आज आ रही है जी जयंती है
0: तो भाई देखे आनी कुड़ी नहीं भूल सके और गोली गुड है क्यों है उमे काम करता है
1: वो अपने अमरीका रहा लेकिन बॉलीवुड में काम करता है भारतीय फिल्म उद्योग में।
0: वाह भाई तो कह नहीं आनी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदेरा फूल चनावा बड़े
1: आग लो नाव है अनीता पाल दुरई ठीक है और नवलाबा आज है ना आरो है जुको महिला रो है जुको आज जन्मदिन है
0: ठीक
1: 22 जून 1985 तमिलनाडु मैंने जलमिया और बॉस्केट बोल रही बहुत बड़ी खिलाड़ी
0: ठीक बा है जुको ऊंची है जुको बाकेट
1: बोल है जुको
0: है जुको बाकेट छाबड़ी लागुड़ी वे
1: छाबड़ी लागुड़ी वे
0: उनमें भगवान आने हजत हजारा के अच्छों का खेल खेलता रहे
1: और आने सरकार 2021 रे मैंने पद्मश्री में सम्मानित करी
0: कोटि कोटि बधाई है आने मुझे तुम भाई देखे के बड़े अरे मारे हर जगह मोगी रे
1: भैया कहीं करो नवला भाई एकदम मेला
0: अरे ले भाई मैं कहूँ है परसी ने पानी पी लियो एक दिन गाया है थोड़ी बंदनिया तोड़ा नाई की जो लाल तोड़ियो ले नायो पाछो आओ तो पानी पी लियो माल तबीयत खराब
1: है हुक जी तो नहीं पिलायो पानी कटी
0: अरे हुक जी दुख जी है भेड़े ही है भाई ले
1: तो देखो नवलाबा आग लो जो को नाम है नी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ठीक है और ए अपने आधुनिक युग मैंने श्रेष्ठ ब्रज भाषा रा कवि है और आज आ रही जैन पुण्यतिथि है
0: फोत हुआ
1: आज फोत हुआ आज रे दिन
0: मथुरा हम ही है जो कह नहीं भाई आप रहे जो क्या जन्मिया मीठी भाषा में जरूर है नी आपकी कोई कविता दूजी करी तो भाई यानी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदेरा फूल चढ़ावा
1: आग लो देखो के नाम है आपने जगह थे मैंने बताई एक बार आरी कविता बताई केदारनाथ जी अग्रवाल ठीक है और आज है जगह नवलाबा आरी पुण्यतिथि है और है युग की गंगा फूल नहीं रंग बोलते हैं पंख और पतवार मतलब ये की बहुत सारी किताबा लिखी है और ये बहुत ही जानिया मैंने है जगह साहित्यकार कवि लेखक
0: वाह भाई तो कहनी गुणी मिन घा तो आनी कोटि कोटि नमन है और मंदेरा फूल चढ़ावान पर बात पर धोक देव बड़े
1: आगलो नाम है बदेंत आनंद कौशल्यान ठीक है और आज आरी भी पुण्यतिथि है बौद्ध भिक्षु पाली भाषा मूर्धन्य विद्वान और लेखक है
0: ओहो बदेंत आनंद कौशल्यान नाम होनी ओड़ो भाई
1: होनी ओड़ो ना
0: हाँ नाम होनी ओड़ो हो गए बौद्ध कैनिक भाई के बाप रे भगवान बुद्ध रे बतरे मार्ग माते हालता और कैनिक सरल मार्ग है मध्यम मार्ग है तो भाई देखो के आनी कोई नहीं है जिसको भूल सके।

0: और आज जी की नवला बा आरी पुण्यतिथि है और ए देखोगे भारतीय फिल्म निर्देशक निर्माता अभिनेता और व्यवसायी हा और तेलुगु सिनेमा मैंने बहुत ही बढ़िया काम करियो जनाने भारत रे मैंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित
1: ठीक ठीक दिखना दे भारत में काम तो जटे मन को कह नी राजी हो चुकी मोटी बात है यानी कोटी कोटी नमन है मंदिरा फूल चढ़ावा और भाई राम भी जी लयोड़ा है रामेश्वर हपाड़ी करनो है बाढ़ काटा करना है कह भाई खाद आला है बढ़िया ढीला करियो दिखे
0: आजकल नवला बा ट्रैक्टर लारे एक को पंखो लागे जे खातरो डिगलो आप डिगली बढ़ाई बीर माँ डिगली मत वो पंखो ले जाए रोके और फर एला फेरे जो खाद हकड़ी उड़ जाओ
1: और तो बस उड़ जाए ट्रैक्टर लिया कर नहीं आगो लान बिकेर दे कर कब तगारी होने को
0: हाँ वो ट्रैक्टर बुला ले
1: हाँ वो बुला ले फिर तवियां कटा ले
0: हाँ
1: तो भाई बेड़ा रहा भाई मोती नहीं पड़ी है बात भली हो हमें एक छोटो घर जिसी होना घर जिसी होना
0: हाथ हल्को करो
1: हल्को तो मैं कर भारी कर दूं भाई
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
1: बोले रे क्या क्यों कर बो का
0: वह था राजस्थानी बढ़िया गीत तो
1: हुनो गीत नहीं हुनो मार मार अर्जे सुना
0: अर्जे साजी रे।

0: हाँ भाई वाह वाह।
1: अबे देखो के नवलाबाद जो को लास्ट नाम है वो है अक्की नैनी लक्ष्मी वारा प्रसाद राव और आने शोर्ट नाम है LV प्रसाद।

0: वाह भाई रे मैं बात थारू कह भी कोई मारू कड़े नहीं हुए तो हर तो एक तो जीवड़ो एड़ो है थे आओ नहीं
1: हाँ।
0: तो मारो खून बाल दो है
1: नवला बा खून तो देखो मैंने 15 दिन हुआ पेगारी करता ने फिर भी मैं थके हो तो हाजिर हुई मैं
0: बाकी कौन हाजिर हुई तो नियाल कर दियो भाई
1: अबे बाड़ा भेद कटाई
0: में अरे बू जा मैं तो भाई जा तू हमें जा पर थन मैं भेड़ू करू मार मन को
1: भेड़ू तो मैं

0: झगड़ा ही मराठी बेड़ू करा बड्डी क्यों कारीगरारी खानो बनाए दियो और थार बात तो क्यों रात रा सत्संग में जाए की रहे हो आ संगत
1: माया बाई है नहीं मारे सत्संग हाँ?
0: अच्छा अभी जगह सत्संग में जाओ
1: उठ जाओ माया बाई रात सत्संग है
0: हाँ
1: उठ जान हूँ है जो कहनी का रात रो बजनिया हूँ
0: तो मैं खीर बने खाओगे नहीं
1: काम खीर तो जीमनी है मन माला तो भेंड दे
0: वाह बढ़िया नवले बाप कौन खावे लबे तो बट माया बाई चिर जाए
1: अरे बट माला भेंड दे भाई
0: हाँ
1: के है रसोड़ तैयार कर दो
0: ठीक है शिवराम जी सुखराम जी पधारो भोजन तैयार ऐसा
1: तारे ऊंचा आई जान कहनी अंधारियो पड़गो है प्रोग्राम टाइम होगो पूरा भाई शेड़ो ले राम राम
0: राम राम।

श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब सुने अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में यह पहला गीत हमने लिया है फिल्म हलचल से। उदित नारायण और सुधाता के स्वर में ये कार्यक्रम का पहला गीत लिखा है समीर ने और संगीत से संवारा है विद्या सागर ने।

श्रुता फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में ये गीत आपने सुना फिल्म जान से उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। अब सुने अगला गीत सुखविंदर सिंह के स्वर में। ये गीत हमने लिया है फिल्म नाच मेरी जान नाच से। इस गीत में सुखविंदर सिंह

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म जान से, सोनू निगम के स्वर में ये गीत। गीत लिखा है फैज अनवर ने और संगीत से सवारा है निखिल विजय ने।

0: चाहत।
1: श्रोताओं, ये है कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म स्माइल प्लीज से। गीत गाया है देवेंद्र पटेल और हेमा सरदेसाई ने, साथ दिया है जावेद अली ने। गीतकार है विजय दवे और संगीत से सवारा है देवांग पटेल ने।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है फिल्म शब्द से। इस गीत को गाया है विशाल ददलानी और सुनिधि चौहान ने। शब्द है इरशाद कामिल के और संगीत है विशाल शेखर का।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोता फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज का आखिरी गीत, ये गीत हमने लिया है फिल्म मुसाफिर से। इस गीत को गाया है कुणाल गांजावाला और श्रेया घोषाल ने। गीत लिखा है देव कोहली ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आप सुने समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात 9 बजे न्यूज़ एट नाइन। ये समाचार अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
3: घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसकी कड़ी कार्रवाई करें।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
2: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
5: निभाया, देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे

0: उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था, करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
4: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर

0: बाराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बाराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इजराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में सीआईएसएफ के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन फ्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन

0: ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर 94.68 रूपये पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीन स्टारमर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आप सुने अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म मीनाक्षी से। ये गीत गाया है सुखविंदर सिंह ने और इस गीत को लिखा भी सुखविंदर सिंह ने है। इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

श्रोता, आप सुन रहे कार्यक्रम फिल्म संगीत, और इस कार्यक्रम में अगला दो गाना हमने लिया है सोनू निगम और साधना सरगम के स्वर में। गीत लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत से संवारा है जतिन ललित ने। फिल्म का नाम है हम तुम।

0: देखूं एक लड़की तो दिल मेरा धड़के धड़के।
1: मैंने एक लड़का तो शोला सा भड़के भड़के।
0: क्यों है बहके बहके लड़कियां लड़के लड़के।
2: देखो यह हाल
1: क्या है।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम फिल्म संगीत, और इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुनेंगे फिल्म त्रिमूर्ति से। इस गीत को गाया है उदित नारायण, इला अरुण और सुदेश भोसले ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

सिंह महबूब का क्या नाम है और क्या है बता तेरी हसीन।

थोड़ा सा बस हौसला चाहिए।

केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजने को है। आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से सुने अगला कार्यक्रम खेल पत्रिका। कृपया इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज के इस अंक में सबसे पहले आप सुनेंगे
1: पैरा स्विमर जगदीश तेली से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र उदयपुर का अंशदान है।
2: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि पानी हर बाधा को अपने रास्ते से काटता हुआ आगे बढ़ता रहता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही खिलाड़ी जिन्होंने न सिर्फ पानी की लहरों को बल्कि जीवन में आई हुई सभी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए सफलता के नए आयाम कायम किए हैं। आइए स्वागत करते हैं जगदीश तेली जी का। जगदीश जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: जी नमस्कार सर।
2: जगदीश जी, कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
3: सर, मेरा नाम जगदीश तेली है, मैं राजसमंद का निवासी हूं और पैरा में मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूं।
2: जैसे कहा आप पैरा स्विमर हो
3: जी,
2: तो ये जो आपके साथ जो घटना हुई है इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, ये कैसे हुई और किस उम्र में हुई?
3: सर, ये घटना मैं जब 7 साल का था तब हुई है और उस समय मतलब मुझे भी नहीं पता था, इतना नॉलेज तो छोटा था मैं उस समय, लेकिन ये 7 साल की उम्र मेरे साथ घटना हुई थी।
2: अचानक से हो गई थी ये?
3: अचानक मतलब ऐसे मेरे माता पिता बताते हैं कि अचानक मतलब पैर जो है पैरालिसिस हो गया, मैं चल नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ तो वापस थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था।
2: जैसे आपने कहा आपको 7 साल की उम्र में ये हुआ, तो उसके पहले तो आप एक नॉर्मल किड थे
3: जी,
2: लेकिन जब ये घटना हुई तो फिर आप
3: एक
2: पैरल वो हो गए, आप डिसेबल।
3: हाँ,
2: वो
3: जो, जो चलने में भी सहारे की जरूरत होती थी उस समय
2: जी। तो जो समाज है उसका रवैया आपके लिए बिल्कुल बदल गया या वो ही रहा?
3: नहीं, बहुत नेगेटिव था सर।
2: जैसे कि
3: जैसे हीन भावना से या फिर कोई बोल देना, जैसे डायरेक्टली बोल देते थे, मतलब एक ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन अब ऐसे शब्द है कि जैसे लंगड़ा है ऐसे बोल
2: जी, जी।
3: इस तरह की सुनने को मिलता था, अब कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा,
2: मतलब वो समझते थे कि आप बोझ बन जाओगे।
3: जी, बोझ बन जाओ जी।
2: और आपके माँ बाप क्या सोचते थे?
3: नहीं, उनका मतलब बहुत पॉजिटिव था, जो भी है वैसा है, क्योंकि माँ का एक मतलब कैसा भी बच्चा हो माँ बाप का तो लाडला होता है
2: जी
3: जी। तो वो उसमें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई उनके सपोर्ट से।
2: आपको कब ऐसा लगा कि मुझे कुछ अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करना है, खासकर स्विमिंग को लेकर?
3: ये सर एक मतलब एक खेल खेल में हुआ है। मैं जब ऐसे स्विमिंग खाली सीखने जा रहा था और जब मैंने भक्ति शर्मा का देखा, उदयपुर जलपुरी नाम से फेमस है
2: जी,
3: और उनकी माता जी के अंदर भी मैंने स्विमिंग सीखी थी बाद में, तो उनका मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें वो इंग्लिश चैनल पार किया था 2016 में, तब से मेरे भी मन में आया कि लड़की होके कर सकती है। तो मैं खाली राजसमंद झील क्यों, मैं नहीं सोचा कि मैं राजसमंद झील में भी पार करूँ, तो मैंने ऐसे सोचा था और किसी को बोला मैंने, भाई मैंने ऐसे राजसमंद झील पार करनी, तो मुझे बोला कि नहीं नहीं तू तो दिव्यांग नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने दिमाग से आने की अब तो करना ही है, मतलब एक तरह का मैंने पॉजिटिव लिया कि नहीं नहीं अब तो मुझे करना है, उन्होंने मना किया इसका मतलब, क्योंकि मुझे स्विमिंग आ गई थी और मुझे पता है कि मैं डूबूंगा तो नहीं, कम से कम कैसा भी हो जाए, मौसम कैसा हो जाए भले या फिर कुछ भी हो जाए।
2: स्विमिंग में सबसे जरूरी होती है कि आपके हाथों के साथ साथ पैरों का भी इस्तेमाल हो
3: जी,
2: ठीक है। तो आपको शुरुआती दौर में किन बाधाओं का सामना करना पड़ा?
3: सर, एक भगवान मतलब एक लोग कहते हैं कि भगवान कुछ लेता है तो देता भी है, तो मेरे में एक चीज थी कि मेरे जब कोच भी बोलते सब

0: मेरे जो पैर में जो जो पोलियो है उसकी वजह, मतलब पता पता नहीं, मतलब लेकिन मेरा हाथ में जो हाथ है आम स्विमर जो होते हैं उनसे थोड़े लंबे हैं, तो
1: अच्छा,
0: मेरे वो मुझे फायदा मिला उसका।
1: उस चीज का फायदा मिला।
0: जी
1: और फिर जब आपने शुरुआत की तो फिर कहां से, नॉर्मल स्विमिंग से ही की कि जैसे आप गांव में तो लोग बात तालाबों से शुरुआत
0: नहीं,
1: करते हैं?
0: तालाबों से सर वही नॉर्मल स्विमिंग जो देसी गांव में होती है, क्योंकि मुझे फ्री स्टाइल का स्ट्रोक भी उदयपुर में आया तब पता चला कि भाई एक्यूरेट स्विमिंग ये भी होती है।
1: अच्छा,
0: जी
1: और फिर उसके बाद फिर आप कैसे कैसे धीरे धीरे अप्रोच करते गए?
0: मैं फर्स्ट टाइम सर यहाँ यूपी में एक रिवर स्विमिंग थी नेशनल इवेंट, उसमें गया और ब्रॉन्ज मेडल लगा, तो एक तरह का होता है जैसे एक मेडल लग गया तो आपके पंख लग गए हो।
1: हाँ बिल्कुल।
0: जी तो उस टाइप का मेरा वहां हुआ। फिर मेरा मतलब एक अब खुद में भी सर पॉजिटिव सोच ये सब जागृत हो जाती है कि एक मेडल लग गया तो मतलब आपको फिर धीरे धीरे सब रास्ते भी खुल जाते हैं, कहाँ से कहाँ आगे क्या बढ़ना है, आगे के जो भी स्ट्रोक है कैसे सीखने हैं ये चीजें सब।
1: एज अ पैरा स्विमर और नॉर्मल स्विमर जब सीखते हैं तो इन दोनों में ट्रेनिंग को लेके क्या अलग अलग रवैया रहता है,
0: बहुत
1: या फिर
0: डिफरेंट
1: मतलब टेक्निक वगैरह कुछ अलग रहती है दोनों में?
0: नहीं, तकनीक तो सर सेम होती है लेकिन समझाने का तरीका जो होता है,
1: जी।
0: जैसे आम आम स्विमर है उनको कोच समझा सकता है उनके तरीके से क्योंकि उनको पता है वो। आज हमें पूरे भारत में कई बहुत कम देखने को मिलते हैं दिव्यांग के लिए स्पेशल कोई कोच हो,
1: बिल्कुल।
0: तो अब कोच दिव्यांग अगर के लिए दिव्यांग के लिए होगा तो वो उसकी तरफ से समझा सकता है क्योंकि उन्होंने वो फेस किया है। अब जैसे मैं हूं, मैं दिव्यांग हूं और मेरे जो स्टूडेंट है, मैं मुझे पता है ये अगर पैर नहीं है तो क्या तरीका अपनाएंगे तो जाके वो मेडल लाएगा, तो उस तरीके से वो अब धीरे धीरे होने लगा है। पहले ये नहीं था कि दिव्यांग के लिए वो समझाने वाला हो, जैसे मुझे बहुत सारी जगह ऐसे भी थे कि नॉर्मल स्विमर जो स्विमर स्विमिंग कर रहे हैं उससे अलग रखा जाता है, भाई ये तू अलग यहाँ पे कर ले, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई कि मैं उनके पास में, हालांकि उनके साथ नहीं कर रहा हूँ लेकिन पास में करके मैं उनके तरह के कॉपी करने की कोशिश करता था, तो उससे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है ज्यादा।
1: तो ये स्विमिंग करने के लिए कुछ जैसे स्पेशल इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है
0: जी जी
1: पैरा स्विमर्स के लिए, कि वही इक्विपमेंट्स होते हैं जो नॉर्मल स्विमर्स के लिए रहते हैं?
0: पैरा में कुछ अब आने लगे हैं, पहले नहीं होते थे इतने।
1: पहले नहीं होते थे,
0: जी
1: अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा
0: अब
1: रही है।
0: अपग्रेड होते जा रही है, जैसे अभी डाइविंग के लिए भी आ रहे हैं, सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीजें चेंज हुई है अब।
1: अच्छा, जब आपने अपना पहला मेडल जीता था, जैसे कि आपने बताया ब्रॉन्ज मेडल था शायद,
0: जी
1: है ना, उसके बाद जो समाज का रवैया था वो किस कितना चेंज हुआ आपके प्रति?
0: जो लोग सर मुझे बोलते थे पहले, जैसे मैंने रास मंजिल पार करी उस समय मुझे जो बोलते थे भाई तू नहीं कर पाएगा ऐसा वैसा, वही लोग जैसे माला लेके आए फिर वही लोग तारीफ करते थे, तो वो फिर एक अलग ही खुशी देता था।
1: आपने इंटरनेशनल भी कम्पीट किया है,
0: जी
1: तो जो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था जिसमें आप कंपटीशन में जा रहे थे, उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? कभी आपने सोचा था कि मैं एज अ पैरा स्विमर इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाऊंगा?
0: सर सोचा तो नहीं था क्योंकि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, तो इतना बड़ा सोचना मेरे लिए बहुत बड़े एक सपने की तरह था,
1: जी
0: लेकिन जब समाज का सपोर्ट, अपने घर वालों का सपोर्ट, सबका जो कोच का जो रवैया है या भी उनका जो तरीका है अपने बताने का फेस करने का, उससे सर मुझे बहुत मतलब फायदा हुआ है। और समाज जब एक होता है ना, जब मेरा मतलब ब्रॉन्ज मेडल आया उसके बाद से मेरा लाइफ एक तरह का जैसे चेंज होने लगी थी, तो उससे मतलब अब जब इंटरनेशनल जा रहे हो आप तो उसमें तो होता ही सर एक प्रेशर तो होता है, हालांकि वो अलग खेलने का, लेकिन एक खुशी भी होती है कि चलो एक गांव से निकल के यहां तक पहुंचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।
1: जी बिल्कुल। आपकी उपलब्धियों में सबसे बड़ी चीज है इंग्लिश चैनल और कैटालिना चैनल
0: जी
1: की,
0: जी
1: इन दोनों चैनलों के बारे में आपके मन में सबसे पहले विचार क्या आया
0: सर मेरा
1: और कहां
0: सपना,
1: से आया? मतलब आपने कैसे सोचा कि मैं इन दोनों चैनलों में उतरूं और इनको पार करूं?
0: मैं सर है मतलब जब स्विमिंग की मेरी शुरुआत हुई थी मेन, तब मैं निकला इसलिए था कि इंग्लिश चैनल करना, 2009 में 10 में हमारा प्लान था कि इंग्लिश
1: अच्छा,
0: चैनल
1: आपने
0: करना।
1: उनसे जो उदयपुर की जो
0: जी
1: भक्ति
0: जी
1: जी थी,
0: हाँ,
1: हाँ, उनसे प्रेरणा लेके।
0: उनसे प्रेरणा ली कि भाई मुझे भी इंग्लिश चैनल करना है,
1: हाँ
0: लेकिन क्या हुआ कि ऐसे जैसे तो सर फंड की भी जरूरत होती है।
1: जी
0: अब मैं
1: बिल्कुल।
0: जैसे मैंने पहले बताया कि परिवार में किसान परिवार से हूं तो इतना वहां से तो होना नहीं, मतलब बाहर तक जाना मतलब सोचने से भी, और ट्रेनिंग के लिए भी नहीं हो रहा तो वहां तो क्या होगा सर, तो फिर पैसे नहीं हुए थे, तो मतलब 2010 तक मेरे बजट नहीं हुआ था तो फिर नहीं कर पाया मैं। लेकिन जब मेरे स्टेट लेवल पे नेशनल पे मेडल लगने शुरू हो गए और लोगों का जैसे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, तो अलग अलग बहुत सारी कंपनियों भी हमें सपोर्ट किया, जैसे हमारे केलवा से भी कुछ संस्थाएं हैं, राजसमंद से, उदयपुर से हैं, मुंबई से हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था, और उससे हम इंग्लिश चैनल करके आए। और इंग्लिश चैनल में हमारा सर एक पैरा ग्रुप बना, जैसे हम नेशनल लेवल पे मिलते रहते खिलाड़ी लोग, तो उसमें हमारा एक ग्रुप बना, उसमें बोला सबको करना था इंग्लिश चैनल, तो हमने वहीं से एक प्लान करके 2018 में प्लान किया कि अब करना है, तो फिर हम

0: हमारे जो कोच थे रोहन मोरे जो पुणे के हैं, उनके दिशा निर्देशन में हमने ट्रेनिंग करी वहाँ, और फिर 2018 में करके आए हम।
1: तो जब आप इंग्लिश चैनल पार कर रहे थे, तो उस समय आपको क्या रियलाइज हुआ, कितनी बड़ी चुनौती है, और ये उस समय क्या क्या बाधाएं आई?
0: सर हम एक तो इंग्लिश चैनल अपन बोलते हैं यहाँ, यहाँ खाली खाली बोलना देखना मतलब करना ऐसा सोचना आसान है, लेकिन जब हम वहाँ हम गए ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ जो लगा कि जैसे एक हाथ पैर सुन्न हो जाना,
1: बिल्कुल,
0: ये चीजें हमारी
1: पानी का
0: एक,
1: बहाव भी ज्यादा होता
0: हाँ
1: है।
0: तो दिमाग में कभी भी ऐसा हमारे भी दिमाग में आया था कि यार इसकी जगह कोई दूसरा गेम चूज करते तो अच्छा था, क्योंकि इतना ठंडा पानी और
1: ठंडा
0: खाली
1: पानी,
0: यहाँ मतलब दूसरा गेम करते तो ठंड से बचाते हैं, लेकिन वहाँ चलो गे है। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग करी वहीं पे, तो हम उसी लेवल मतलब जहाँ पे हम देखते थे वहाँ के लोग एकदम ओपन, जैसे हम कट में घूम रहे हैं कट कपड़े पहन के, और हम ऐसे जो अपने सर्दियों में पहनते हैं वो कपड़े पहन के घूम रहे थे, तो वहां पे भी लगा कि ये सर ये मतलब इसके तो ये अब हम कैसे कर पाएंगे। तो धीरे धीरे धीरे हम 1.5 महीना वहां प्रैक्टिस करी, उसके बाद में हमने उसी उनकी तरह ऐसा आराम से कर लिया जैसे।
1: और फिर उसके बाद कैटेलिना चैनल का नंबर आया।
0: जी
1: जो चुनौतियां इंग्लिश चैनल के समय थी, क्या वही चुनौतियां कैटेलिना चैनल के समय थी, कि वहां पे
0: नहीं
1: कुछ विपरीत वो माहौल
0: वो
1: था?
0: विपरीत माहौल था वहां, इंग्लिश चैनल बहुत टफ है
1: हाँ,
0: और केरला चैनल थोड़ा सा लाइट, मतलब थोड़ा सा मतलब आप एकदम इजी भी नहीं मान सकते उसको, लेकिन थोड़ा लाइट है जो ठंडे जो कम ठंडा है जैसे, और चैलेंजिंग नहीं। इंग्लिश चैनल में बहुत करंट आते हैं, जैसे करंट वेव आते हैं अंदर के जो आपको पीछे खींचते हैं, तो केरला चैनल में इतना नहीं था। और प्लान था हमारा कि जैसे इंग्लिश चैनल करना फिर केरला चैनल करना, 7C का टारगेट था, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए थे।
1: अच्छा सर, आप एक ट्रेनर भी हैं,
0: जी
1: आपके पास जब कोई बच्चा स्विमिंग के लिए आता है, खासकर पैरा स्विमर, उसमें आप सबसे पहले कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करते हैं कि वो पानी में उतर के स्विमिंग कर ही पाएगा?
0: नहीं उनको विश्वास में लेते सर, प्यार से भी बच्चे मतलब कर लेते हैं, जैसे साम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ते हैं हालांकि,
1: अच्छा
0: लेकिन पहले जो होता है प्यार से समझाना जैसे करना ना कराना वो कर लेते हैं, हालांकि ज्यादातर ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं होती है ना। और पैरा स्विमर तो सर वैसे ही वो आते हैं, मतलब ऐसे मैंने अब तक जो सीखा है जितने भी पैरा हैं, मुझे जो नॉर्मल लोगों को सिखाना और उनको सिखाना बहुत आसान लगा, मतलब पैरा को सिखाना मुझे बहुत आसान लगा
1: ऐसा
0: तब।
1: क्यों?
0: पता नहीं ये अलग ही उनके अंदर एक सर अलग ही होता है, वो जुनून होता है थोड़ा सा एक, क्योंकि
1: हाँ,
0: वहां तक आना
1: कुछ
0: मतलब
1: साबित करने का जुनून रहता है
0: हाँ
1: किसी
0: बस
1: को
0: साबित
1: भी।
0: करने का जुनून होता है, बाकी होता है नॉर्मल जो भी आते हैं सीखेंगे तो ठीक है, नहीं तो वापस चले गए ऐसे।
1: आप
0: लेकिन
1: पिछले कितने सालों से सिखा रहे हैं?
0: मैं 4 साल हो गए सर सिखाते
1: तो इन
0: हुए।
1: 4 सालों में आपका ऐसा कोई शिष्य जिसने बहुत ज्यादा, मतलब काफी उपलब्धि हासिल कर ली हो?
0: एक है हमारा विष्णु कुमार बेरवा, जो अभी हाल ही में वो एक गोल्ड 2 सिल्वर लेके आए हैं बेंगलोर में पैरा जूनियर पैरा में।
1: आपके नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा उपलब्धि उन्होंने वो
0: जी
1: हासिल
0: जी
1: की है।
0: हाँ
1: अच्छा जगदीश जी, जाते जाते हमारे जो श्रोता है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हमारा उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को अपने बचाव इतना स्विमिंग आनी चाहिए, अगर आप अगर हो सके कंपटीशन की तैयारी करते तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बचाव जितनी तो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, और माता पिता को भी अपने बच्चों को अपने बचाव जितनी सिखानी चाहिए।
1: तो श्रोताओ, ये थे श्री जगदीश तेली जी। आपने अपनी कहानी से ये बताया, ये साबित किया कि शारीरिक बाधाएं सिर्फ नाम की होती है, अगर आपका मानसिक ताकत हो और आपके पास कर जाने का जुनून हो, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, भले वो इंग्लिश चैनल हो या कैटेलिन चलो। और हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में सातों के सातों चैनल पार करें,
0: जी धन्यवाद
1: हमारे
0: सर।
1: उदयपुर का, राजसमंद का, और हमारे देश का नाम रोशन करें। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे पैरा स्विमर जगदीश तेली से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र उदयपुर का अंशदान था। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी प्रखर मदान से की गई बातचीत।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी से मिलवा रहे हैं जिसका खेल बहुत ही तेज गति का है, और उसमें शॉट मारने के लिए आपको इतना कम समय मिलता है जैसे सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आप उस खेल के शॉट को कहां और कैसे मारे ताकि आप अधिक से अधिक अपने पॉइंट बना सके। जी हां, उस खेल का नाम है टेबल टेनिस, और टेबल टेनिस के एक खिलाड़ी के तौर पर आज हमारे साथ हैं श्री प्रखर मदान। प्रखर मदान नमस्कार, स्वागत है आपका।
4: नमस्कार
3: प्रखर, टेबल टेनिस की बात की और जो जैसा कि मैंने कहा कि इतना कम समय मिलता है सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम जब आपको शॉट मारना पड़ता है, ये बात सच है?
4: हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आपको आधा सेकंड से एक सेकंड रहता है, उसमें आपको पूरा डिसाइड करना होता है आपके पास बॉल स्पिन कौन सी आ रही है, कैसे कितनी स्पीड में बॉल आ रही है, सामने वाला प्लेयर कहाँ पर खड़ा है, आपको वो बॉल कहाँ पर प्लेस करनी है, ये सब चीजें आपको आधे से एक सेकंड में डिसाइड करके ही सब कुछ, आपका फैसला लेके आपको उधर बॉल प्लेस करनी होती है।

0: इतनी तेज गति का खेल है ये, जिसमें इतना कम समय हमको शॉट मारने के लिए सोचने का समय मिलता है कि हम कैसे अपने पॉइंट्स को बचाएं और अधिक से अधिक अपने पॉइंट बनाएं। टेबल टेनिस के खेल की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ?
1: तो ये स्टार्ट हुआ था जब मैं करीब 10 साल के आसपास का था, जब मैं फिफ्थ फिफ्थ क्लास में था।
0: जी
1: तो मेरे पापा ने मुझे इसके लिए इसमें लगाया है, मतलब मेरे पापा बहुत खेलते थे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम। तो इसका शुरुआत हुआ, मेरे पापा ने एक टूर्नामेंट जीता था, तो वो बहुत सारे प्राइजेस लेके आए थे घर पे एक बार। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, तो मैंने ऐसे ही पापा से सीखना चालू किया मेरे घर की डाइनिंग टेबल पे।
0: अच्छा
1: तो मेरे पापा हमेशा ऑफिस से आते थे, तो मैं डाइनिंग टेबल हमेशा रेडी करके सेट करके उस पर नेट वेट लगा के मैं हमेशा तैयार रहता था और पूरा इंतजार करता था उनका। और फिर मेरे पापा ने मेरे को खेलना सिखाया उसका। तो धीरे धीरे ऐसा चलता रहा, हम लोग खेले ऐसा 2-3 महीने। फिर मैं धीरे धीरे मेरे पापा को टक्कर देने लगा,
0: अच्छा
1: पापा के साथ अच्छा जीतने लगा, मतलब वॉल प्रैक्टिस करता था मैं पापा। फिर घर आते थे तो खेलता था उनके साथ। तो फिर ऐसे ऐसे मेरा गेम काफी इम्प्रूव हुआ। और उसके बाद फिर ये देख के मैंने स्कूल में भी खेलना चालू करा। तो स्कूल में फिर मेरा धीरे धीरे हाउस टीम में सिलेक्शन हुआ। फिर ये ऐसा ऐसा करके मैंने फिर शाम को मैं आके डाइनिंग टेबल पे फिर मेरे को छोटी लगने लगी। और फिर मेरे पापा ने मेरे को, जो मैं तब अलवर में रहता था,
0: जी
1: तो अलवर में स्टेडियम था एक, वहां पे अच्छे प्लेयर खेलते थे। तो धीरे धीरे मैं अपनी मम्मा के साथ जाता था वहां पे शाम को खेलने, तो वहां पे मैंने खेलना स्टार्ट किया। फिर ऐसा करीब ये चला होगा 1 से 2 साल, फिर मैं अपनी स्कूल की टीम में सेलेक्ट हुआ। तो तब मैं सबसे छोटा प्लेयर था जो स्कूल की टीम में सेलेक्ट हुआ था 7th क्लास में। फिर उसके बाद हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट खेला, तो 8th स्टैंडर्ड की बात है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट खेला था, जिसमें मेरा पहली बार ही मैं डिस्ट्रिक्ट खेला था और पहली बार में मेरा स्टेट में सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसे ही चला। फिर 9th स्टैंडर्ड में भी मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, और 9th स्टैंडर्ड में मैं डिस्ट्रिक्ट में एज अ मैंने 8th स्टैंडर्ड में मैं 5th क्वालिफाई किया था सिर्फ, बाकी 9th स्टैंडर्ड में मैंने 2nd स्थान प्राप्त किया पूरे जयपुर में।
0: जी
1: तो उससे मेरा फिर वापस स्टेट हुआ। और फिर उसी साल मैंने पूरे ऑल ओवर राजस्थान में 4th रैंक हासिल करी थी एज अ स्टेट स्टेट लेवल पे।
0: स्टेट लेवल पे, जैसा आप बता रहे हैं कि 7th से आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना शुरू किया और लगातार पहली दूसरी पोजीशन के आसपास ही आप स्टैंड करते रहे, और पापा ने आपको को देखकर आपको इसका शौक लगा। अभी खेलते खेलते आपको काफी अरसा हो गया है, और स्टेट के बाद में क्या कभी नेशनल टूर्नामेंट में किसी में जाने का मौका मिला जहां पर दूसरे स्टेट के प्लेयर्स भी आए हों?
1: स्टेट के बाद हमारा ऐसा होता है, जब मैं 4th रैंक आई थी मेरी ऑल ओवर राजस्थान में, मतलब पूरे स्टेट में, तब हमारा नेशनल कैंप लगता है जिसमें 10 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो एक रहता है आपका क्वार्टर फाइनल में जो 8 लोग आते हैं, उसके बाद 2 बच्चे वो उनकी ओवरऑल रैंकिंग एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के 2 लोग जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहते हैं टेबल टेनिस के, वो लोग सेलेक्ट करते हैं। तो उसका 10 लोग का हमारा नेशनल कैंप हुआ था जयपुर में, 2014 की बात है ये। तो 2014 में नेशनल कैंप हुआ था, तो उसमें मैं थोड़े से रैंक से रह गया था, तो 5 लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें, तो मैं 6th पोजीशन पे आया था। तो उस साल मैं नहीं खेल पाया था। फिर नेक्स्ट ईयर भी 10th स्टैंडर्ड में भी मैं गया था खेलने स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे मैं 3 बार स्टेट लेवल खेला हूँ, और 3 बार टीम इवेंट में हम लोग 2nd आए हैं, 2 बार मैं जयपुर की तरफ से खेला हूँ, और 1 साल मैं 8th स्टैंडर्ड में अलवर की तरफ से खेला हूँ।
0: जी हाँ, प्रखर मदान, आप काफी तेज गति से इस गेम को खेलते हैं, और इससे कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो स्टेमिना है काफी इसमें चाहिए खेलने के लिए। वास्तव में अगर हम टेबल टेनिस की टेक्निक को सीखना चाहें, क्या टेक्निक का गेम है या माइंड का गेम है, किस तरह से हम इसको खेलते हैं?
1: तो जहां तक मेरा अनुभव है, मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों का ही गेम है, गति का भी गेम रहेगा इसमें, और इसमें आपका टेक्निक भी बहुत रहता है, और ये बहुत धीरे धीरे आपको आता है। आप सोचोगे कि आपको बहुत जल्दी आ जाए, ऐसा नहीं रहता। ये बहुत ही आपके आपको बहुत इसमें अनुभव चाहिए, बहुत टाइम की प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप इसमें वो मास्टर कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि बहुत स्पीड से बॉल आती है और बहुत तरीके की स्पिन होती है इसमें, साइड स्पिन होती है, बैक स्पिन होती है, फॉरवर्ड स्पिन होती है। तो आपको वो चीजें एनालाइज करने में और देख के खेलने में काफी समय लगता है, बहुत टाइम लगेगा आपको ये सब सीखने में। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मतलब स्टैमिना के लिए भी, मतलब मेरा कोच मुझे मल्टी बॉल वो प्रैक्टिस कराता था, उसमें बहुत ज्यादा स्टैमिना चाहिए होता है। फिर आपका फुटवर्क आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय होता है कि आप पोजीशन से इधर लेफ्ट से राइट, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करें, तो फुटवर्क भी इसमें एक बहुत ज्यादा, इसमें आपको बहुत ज्यादा काम का है, तो उसका आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। और बाकी मेरा कोच मुझे ये मल्टी बॉल से, और उससे मेरा स्टैमिना काफी इम्प्रूव हुआ था।

0: जैसा आप बता रहे हैं कि आपके कोच ने आपको सिखाने में काफी मेहनत की है, आपने दो शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया है, फुटवर्क और स्पिन। ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट की बात कर रहे हैं।
1: हाँ, वो बॉल का गेम में तो सब में ही रहता है आपका। आप टेनिस ले लो, टेनिस और टेबल टेनिस दोनों में आपका सारा स्पिन रहता है। बैक स्पिन, फॉरवर्ड स्पिन, साइड स्पिन, तो वो सब आपको देख के खेलना पड़ता है कि आपको कब साइड स्पिन का आपको कैसे सामने वाले को रिप्लाई करना है बैट से, तो वो सब आपको देख के ही करना पड़ता है।
0: प्रखर, कभी आपको लगा खेलते खेलते कि यार एक बहुत ही टफ गेम है और इसमें काफी स्पीड चाहिए और मुझे गेम बदलना चाहिए, कुछ और खेलूं, ऐसा विचार मन में आया कभी?
1: नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा विचार आया, लेकिन मैं जरूर, मैंने बैडमिंटन भी बहुत खेला है, मेरे पापा ने सिखाया वो भी मेरे को, तो मैंने बैडमिंटन भी बहुत खेला है और लॉन टेनिस, तो मैंने सारे तीनों रैकेट स्पोर्ट बहुत खेले हैं, बट प्रोफेशनली मैंने टेबल टेनिस को ही वो चुना क्योंकि मेरे को उसमें सबसे ज्यादा मजा आता था। लेकिन एज अ मैं बोलूंगा, लेकिन काफी ये टेबल टेनिस और लॉन टेनिस काफी सिमिलर गेम है क्योंकि इसमें आपका स्पिन वगैरह सब ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, लेकिन थोड़ा, लेकिन बैडमिंटन भी खेला है तो फुटवर्क मेरा उन सबसे भी काफी इम्प्रूव हुआ है क्योंकि बैडमिंटन में थोड़ा आपका बड़ा एरिया हो जाता है, तो उसके लिए आपको और फुटवर्क ज्यादा अच्छा चाहिए होता है, तो मैं कहूंगा कि मेरा बैडमिंटन और लॉन टेनिस खेलने से भी मेरे गेम में काफी इम्प्रूवमेंट आया है।
0: इसका मतलब ये हुआ कि एक टेबल टेनिस के प्लेयर को बैडमिंटन और टेनिस दोनों खेलना जरूरी है ताकि
1: नहीं, खेलना जरूरी नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अगर आप खेलते हैं तो आपका फुटवर्क और ये सब जो
0: मतलब आपकी गेम में इम्प्रूवमेंट आता है।
1: हाँ, गेम में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, करेक्ट।
0: ऐसा कोई मैच याद है जब आपको बिल्कुल नेक टू नेक लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा, हारते हारते जीत गए, या ऐसा कि मैं जीत रहा था और जीतते जीतते हार गया?
1: तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मेरा नेशनल कैंप लगा था, 900 की बात है ये, तो उसमें मेरा वो चल रहा था, प्री क्वार्टर फाइनल चल रहा था जिसमें 16 लोग रहते हैं, तो उसमें मेरे को नेशनल कैंप क्वालिफाई करने के लिए आपको टॉप 8 में आना चाहिए जो कि होता है क्वार्टर फाइनल। तो उसमें मुझे अच्छे से याद है, मेरा एक दोस्त ही था, मैं तब ए स्टैंडर्ड में अलवर से खेलता था और 9th स्टैंडर्ड में पापा का ट्रांसफर हुआ था जयपुर, तो मैं जयपुर के उससे खेल रहा था, तो मेरे दोस्त से ही मेरा मैच था जिसके साथ मैं अलवर में प्रैक्टिस किया करता था, तो वो 2-0 जीत रहा था और ये तीसरा बेस्ट ऑफ 5 का मैच था, वो 2-0 अप था और थर्ड मैच भी मैं वो 10-7 पॉइंट चल रहा था, तो टेबल टेनिस का मैच होता है 11 पॉइंट्स का मैच होता है, तो 10-7 का स्कोर चल रहा था और उसके बाद मैंने 3 पॉइंट लगातार लेकर ड्यूस पे मैं मैच को लेकर आया और उसके बाद लगातार मैंने अगले 2 गेम भी जीते और उसी से ही मेरा नेशनल कैंप में सिलेक्शन हुआ था और उसी परफॉर्मेंस के चक्कर में मैं मतलब काफी फेमस हो गया था और जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं आपके टेबल टेनिस के उनके भी उसमें आ गया था मैं। तो फिर उसके बाद मेरा नेशनल कैंप लगा, उसमें मैंने प्रैक्टिस करी बट कुछ कारण के चक्कर में मेरा नेशनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मैं कैंप में बाहर हो गया था, बट वो मैच एक ऐसा मैच है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा जिसके चक्कर में मेरा काफी इम्प्रूवमेंट भी आया, मैं काफी लोगों से मिला भी सही और मतलब गेम चेंजिंग मैच था वो मेरे लिए।
0: प्रखर, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत जुनूनी खिलाड़ी किसी अच्छे खिलाड़ी को देखकर उसका मैच देख देख कर गेम सीख जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी हम मानते हैं कि अगर आपको परफेक्ट खिलाड़ी बनना है तो एक कोच होना जरूरी है जो आपको सारे कमियों को दूर कर दे और आपको एक परफेक्ट प्लेयर बनाए, तो कोच का रोल टेबल टेनिस में कितना है?
1: कोच का रोल बहुत होता है आपका, तो जैसा कि मैं इधर जयपुर के SMS स्टेडियम में खेला करता था तो हमारे उधर एक संजय सर करके होते थे, तो उन्होंने मेरा बहुत बहुत सहयोग दिया है मेरे साथ, उन्होंने मेरा सारा जो मेरा पूरा एक आपका मूवमेंट रहता है हैंड का, तो आपका मेरा स्टार्टिंग में रिस्ट बहुत मूव होता था तो जो कि आपका नहीं होना चाहिए, तो रिस्ट का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो टेबल टेनिस में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है
0: जी।
1: तो वो मेरा उन्होंने काफी इम्प्रूव कराया है, तो मैं उनको उसके लिए बहुत, मेरा उसके बाद से ही काफी इम्प्रूव हुआ है गेम, तो काफी महत्व रहता है। बाकी जो आपके आपको जब आपका मैच खेलते हो आपको उसमें सपोर्ट की जरूरत होती है, तब का भी कोच बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं आपको, तो वो बहुत सही अच्छा रहता है।
0: ऐसा कोई खिलाड़ी जिसको देखकर आप चाहते हैं कि मैं भी उसके जैसा खिलाड़ी बनूं, एक बड़ा खिलाड़ी, एक रोल मॉडल जो होता है ना, जो हमें काफी प्रेरित करता है कि यार अगर टेबल टेनिस में खेल रहा हूं तो मुझे इसका गेम बहुत अच्छा लगता है?
1: तो इसके लिए मैं 2 लोग को वो करूंगा, एक है तिमो बोल जो कि है जर्मनी के बहुत बड़े खिलाड़ी है, बहुत बार वो वर्ल्ड नंबर 1, 4 से 5 बार वर्ल्ड नंबर 1 का उनका वो रहा है, बाकी रैंकिंग रही है एंड वो अभी भी 41 इयर्स के हैं लेकिन वो अभी भी खेल रहे हैं और अभी भी वो टॉप 20 टॉप 10 में आते रहते हैं, तो उनको ही देख के मैंने यूट्यूब पे उनके बहुत वीडियोस देखे हैं, उनकी टेक्निक से मैंने अपने आप को बहुत घर पे प्रैक्टिस करके बहुत इम्प्रूव करा है। और एक दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा मानव ठक्कर करके, वो इंडिया के ही खिलाड़ी है और वो काफी यंग लेवल के खिलाड़ी है जो कि

0: अभी अपने इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे जयपुर में भी खेलते हुए देखा है. वो अजमेर में प्रैक्टिस करते थे PSPB अकेडमी में, तो उनको मैंने देख के मतलब काफी मैंने अपना रोल मॉडल माना है. वो काफी कम उम्र से वो खेलना चालू कर रहे थे और काफी अच्छा खेलते हैं वो, और अभी सबसे छोटे प्लेयर होंगे जो
1: जी
0: वर्ल्ड
1: हाँ,
0: इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे
1: प्रखर
0: हैं.
1: आप अभी जॉब में भी आ गए हैं और आपका खेलना भी जारी है, तो आगे आपका इस खेल को लेकर टेबल टेनिस में कोई अच्छा सा ड्रीम होगा, क्या करना चाहेंगे?
0: तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 9th स्टैंडर्ड में मैं नेशनल कैंप तक ही जा पाया था, और फिर मेरा नेशनल में कभी खेला भी नहीं था. 10th स्टैंडर्ड में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था, तो वो मेरा अभी अधूरा रह रखा है. तो उसको मैं, अगर मेरे को टाइम मिला अभी जॉब के साथ, तो मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ. जैसे हमने कॉर्पोरेट इवेंट्स भी खेलते हैं, तो अभी भी मैं
1: जी
0: शाम को जॉब से आने के बाद प्रैक्टिस करता हूँ. तो वो मेरा अगर पूरा हो पाएगा तो नेशनल खेलने का एक, तो मैं मतलब वो मेरा है सपना एक तरीके से, एक बार नेशनल खेलना है मेरे को. तो उसके लिए मैं एक बार जरूर प्रैक्टिस करूंगा और
1: जी
0: सही
1: जी
0: पूरा करूंगा.
1: क्या कहना चाहेंगे नए दौर के खिलाड़ियों के लिए जो नए नए आ रहे हैं टेबल टेनिस में, कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा पेशेंस भी रखें?
0: करेक्ट.
1: जी क्या कहेंगे?
0: तो मैं यही बोलूंगा, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी है. 2 साल मेरे को वॉल प्रैक्टिस करी है मैंने, बहुत लोगों के साथ खेला है. लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो बहुत जरूरी है. मैंने कितने मैचेस खेले वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे को वो याद है कि नए नए लोगों से मिला हूँ कैसे सारे, जैसे मैंने आपको एक मैच बताया उसके बारे में याद रहता है. तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो जो जर्नी है आपकी, वो
1: जी
0: बहुत अच्छी रहती है आपको. फिर आपको खेलना है तो आपका मतलब कुछ ना कुछ तो आपको खेलना ही चाहिए आपको. और टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जो आपको स्टैमिना भी आपका इम्प्रूव करता है, आपका मूवमेंट्स भी, ये आपके
1: अच्छे
0: मूवमेंट
1: रहते
0: स्ट्रांग
1: हैं
0: कराता है.
1: और
0: तो
1: आपको फिट रखने में
0: हाँ,
1: मदद
0: आपको
1: करता
0: फिट
1: है।
0: रखने में बहुत मदद करता है वो. तो नए को मैं ये बोलूंगा, नए खिलाड़ियों को, कि आप खूब से खूब टाइम दें. मतलब एज आ स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए आपको
1: जी
0: उसके लिए,
1: जी
0: लेकिन आपका कोई भी स्पेयर टाइम होगा तो उसमें अगर आप टेबल टेनिस को टाइम दे सकते हैं तो उसके लिए आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए.
1: तो प्रखर मदान, आप एक अच्छे खिलाड़ी बने रहें और नित नई सफलताएं आपको मिलते रहें, ऐसी शुभकामनाएं आकाशवाणी आपको देती है।
2: अभी आप सुन रहे थे टेबल टेनिस खिलाड़ी प्रखर मदान से की गई बातचीत. कार्यक्रम का समय हो चला है, अब हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, ये आकाशवाणी है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: सिक्सटीज की मेलोडीज हो या सेवेंटीज का मैजिक,
2: तेरे बिना जिया जाए ना।
3: एटीज में था डिस्को, नाइन्टीज।
4: ये आकाशवाणी,
5: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये गीत आपने सुना फिल्म वारिस से। अब सुने अगला गीत फिल्म तीन देवी से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है ST परमन ने। तो लीजिए सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म तीन देवियां से।

0: हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: श्रोताओं, ये है सूर्य नगरी चैनल और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो लीजिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म टैक्सी चोर से। ये गीत गाया है किशोर कुमार और उनका साथ दिया है शैलेंद्र सिंह ने। कलम है अनजान की और संगीत से संवारा है बबी लहरी ने। तो सुनते हैं अगला गीत फिल्म टैक्सी चोर से।
2: अरे ना हम पागल है
3: और ना तो बेला है,

श्रोताओं, ये गीत आप सुनेंगे फिल्म तपस्या से। इस गीत को गाया है चंद्रानी मुखर्जी और हेमलता ने। गीत के बोल लिखे हैं MG हसमत ने और संगीत से संवारा है रविंद्र जैन ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम फिल्म संगीत, और इस कार्यक्रम में हम लेके आए हैं इस फिल्म का जो गीत है सल्तनत से। अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। गीत को गाया है आशा भोसले ने, गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
3: Every decision I've taken,
4: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
1: जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं

श्रोताओं, आप सुनते थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, और इस कार्यक्रम में आज आपने सुने गीत फिल्म वारिस से। दूसरी फिल्म थी तीन देवियाँ, टैक्सी चोर, तपस्या और सल्तनत से। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है।

0: strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सायकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। कल सवेरे 5:53 पर प्रातःकालीन सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।